नमस्कार। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स ते असी आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 दे वैसाख महीने दी 18 तारीख, 23वीं सन 226 दे मई महीने दी 8 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 40 सेकंड हो रहे ने ते साडी अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने। सभा दी इस खूबसूरत शुरुआत दे विच असी अपने सारे सुनन वालियां दा निघा स्वागत करदे हां।

जो मिल गया उसका शुक्र कर, जो नहीं मिलिया उसका सब्र कर। पैसा, शरीर, कारोबार, सब कुछ इतने ही रह जाना है। और जेकर फिक्र करनी भी है, जेकर किसी गल के बारे सोचना भी है, तो अपने उस कर्मा के बारे सोचना चाहिए जो असं कर रहे हैं। हमेशा क्यों कहते हैं कि हमेशा चंगे कर्म करो, क्यों कहते हैं कि हमेशा दूसरे का चंगा सोचो, दूसरे का चंगा करो, क्योंकि साडे कर्म होंगे ने जो इंसान नूं तां इत्थे याद रखाउंदे ने, पर साडे कीते कम्मां दा, साडे कीते कर्मां दा, साडी बोली दा सारा हिसाब किताब उस परमात्मा अगे हुंदा है।

ये संसार समुंदर वर्गा है, बहुत डूंगा है, बहुत गहरा है। इस विच बहुत सारे विकारां दियां लहरां उठ रहियां ने। जिहड़ा इंसान, जिहड़ा व्यक्ति उस रब दे शब्दां दा आसरा लैंदा है, उस रब दा, उस गुर दा आसरा लैंदा ना, वो अपने जीवन नूं इन्हां सारे विकारां तों वक्खरा कर लैंदा है। उन्हां विकारां दे विच खुद नूं तबाह नहीं होण दिंदा। सो उस रब दी मर्ज़ी दे विच रहिणा और इस डूंघे समुंदर तो बच के रहना, ये साड़ी कोशिश होनी चाहिए हर दिन की।

FM मैन 102.7 MHz FM रेनबो तुसी सुन रहे हो। सवेर दे 7 बज रहे ने। पेश नहीं हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी अते इस नू हमायत देण वाले तंत्र नू तबाह करन लई राष्ट्र दी वचनबद्धता नू दोहराया है। भारत ने कहा है कि यह कट्टरपंथियों अते वक्खवादियों दे वल्लों कैनेडियन धरती नू सुरक्षित पनाहगार वजों वरतण वाले चिंतित है। तमिलनाडु च नवी सरकार दे गठन नू लैके जोरदार सलाह मशवरे चल रहे ने। भारत अते वियतनाम ने उभरदियां टैक्नोलॉजियां नवीनता खोज अते स्टार्टअप्स विच सहयोग नू होर मजबूत करन ते चर्चा कीती। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत नू एक विकसित देश बनाउण लई किसानां दा विकास जरूरी है।

ईडी वालों ग्रेटर मोहाली एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी जो कि जमीन की वरतों तब्दीली बारे लाइसेंस धोखाधड़ी के संबंध में पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ 12 थावां ते छापेमारी। बीजेपी पंजाब दे एक वफद ने डीजीपी गौरव यादव नाल मुलाकात कीती अते झूठे भड़काऊ अते बेबुनियाद बयान देण दे दोष हेठ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान विरुद्ध FIR दर्ज करन लई एक शिकायत सौंपी। पंजाब खेतीबाड़ी विभाग दे वल्लों फरीदकोट दे विच गैर कानूनी खाद अते कीटनाशक पैकेजिंग यूनिट दा पर्दाफाश। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री श्री वरिंदर कुमार गोयल ने राजस्थान फीडर नहर दी रिलाइनिंग दे चल रहे काम दा जायजा लिया अते अधिकारियों नू काम निर्धारित समय विच मुकम्मल करन दे लई निर्देश दिते। IPL क्रिकेट दे विच बीती रात लखनऊ विखे लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नू 9 दौड़ां नाल हरा दिता। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਜ਼।

नमस्कार आदाब, गुड मॉर्निंग है जी सब नू। FM रेनबो सुनन वाले सारे ही लिसनर दोस्तों का स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम दे विच थोड़ी अपनी आर जी अंजलि आ गई है जी थोड़े लिए। मैं कि जी हर दिन का सफर जिहड़ा वधिया हुंदा है, सोहना हुंदा है, पर इस सफर की शुरुआत जिहड़ी है ना साडे गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम दे नाल हुंदी है। सो अज दे इस सफर दे विच तुसी मेरे नाल, मैं क्या जी अज पूरे दिन दे विच बहुत सारे प्रोग्राम होने ने, पर अज गुड मॉर्निंग जलंधर मैं क्या थोड़ी अपनी आज अंजलि दे नाल और पूरे 8:30 बजे तक ये सफर चलता रहना। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारिया गलां बातें थोड़े नाल साझियां करनियां ने। और मैं क्या जी दिन की शुरुआत जी है ना वधिया होनी चाहिए, हंसते चेहरे नाल, मुस्कुराते चेहरे के नाल दिन की शुरुआत हो अपने आप मैं क्या बहुत कुछ खास हो जाता है। तुसी सोचते हो कि हो जाएगा जो सवेरे उठ के जो नॉर्मल डे की तरह एक इस दिन की शुरुआत की जाए, पर बहुत कुछ चेंज हों बई। जिमें कि पहला भी मैं कहती हाँ कि हाँ अपने नाल सैल्फ टॉक होनी चाहिए है, 15 to 20 minutes तक की अपने आप ना गल होनी चाहिए है, क्योंकि अजकल टाइम शायद उदा का कि असी किसी नाल शायद वह भाव साझा नहीं कर पाते जो असी अपने आप नाल गल कर पाते हैं। सो थोड़ी नवी सवेर है, थोड़ी नवी शुरुआत है, उस नवी शुरुआत की मैं क्या वधिया जी होर एंडिंग जेकर तुसी चाहते हो ना तो उसकी शुरुआत दे विच ही अपने आप ते विश्वास रखना शुरू कर दो, अपने आप दे नाल गल करके इस सफर नूं होर भी वधिया बना लो। और मैं इस सफर दे विच मैं क्या थोड़ा साथ दे दिनी हाँ, थोड़ा जहा साथ दे दिनी हाँ। और अज सवेरे 7 बजे तो लैके हूँ 8:30 बजे तक साढ़ा गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम चलना है। बहुत सारी जानकारी जी है थोड़े लिए आनी है, बहुत सारिया गलां बातें थोड़े नाल होनिया ने। और खास दिन की है, खास अज का दिन की है, क्योंकि अज तरीक है जी 8 मई, शुक्रवार का दिन है। वैसे तो वीकेंड का इंतजार इंतजार मैं क्या बनिया होया, पर फिर भी देखो वीकेंड तो पहला जी मेहनत तो करनी पैंदी है ना, और हाँ उस मेहनत ते असे विश्वास रखना। सो एक रिसर्च के विच भी सामने आया जेकर तुसी प्रोडक्टिव बनना चाहते हो ना, एक प्रोडक्टिव माइंड जेकर थोड़ा होवे, वधिया चीज़ करना चाहते हो, वधिया सोचना चाहते हो, तो तुसी मेंटली बड़े स्ट्रोंग होने चाहिए हो। और मेंटली स्ट्रोंग होने दे लई जिहड़ा है थोड़ी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए है, दिन की दिन नूं वधिया बनाउण दे लई तुहाडा पॉजिटिव माइंड होएगा तो अपने आप मैं क्या चीज़ा बनिया सौखियां हो जाएंगी। सो हर एक व्यक्ति नूं अपने आप ते विश्वास करना चाहिए, जदों विश्वास आ जाता है अद्धी जिहड़ी लड़ाई है ना उत्थे ही जित जाने। सो हर दिन की 10-15 minutes की पॉजिटिव टोक, पॉजिटिव सोच अपने आप के नाल दिन की चंगी शुरुआत, अपने सुपनों रिवाइज करन दा दिन। और मैं क्या इस ही दिन के नाल दुनिया की बेफिक्रियां जिहड़ियां ने ना उन्होंने दुनिया की फिक्रां नूं छड के बेफिक्रा थोड़ा जिहा हो जाना चाहिए, मैनू तो इदा ही लगता। बाकी पता नहीं है, हो सकता है कुछ होर भी सोच जी है बाकियां दी चलती होवे। बाकी साडा तो प्रोग्राम इदा ही चलता रहना, गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम तुसी इंजॉय करियो FM रेनबो ते 102.7 FM रेनबो, 103.6 MHz आकाशवाणी अमृतसर और न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे राही जिहड़े ने लिसनर मेरे नाल इस प्रोग्राम दे विच जुड़े ने। इंजॉय करते रहो प्रोग्राम दिल से दिल तक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

एफ एम एन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी सुन रहे हो जी एफ एम रेनबो दे उत्ते तुसी इंजॉय कर रहे हो जी गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम अपनी आज अंजलि दे नाल। और मैं क्या जी जदों असी रोड ते चलदे आ ना बहुत सारे सानू दिमाग दे विच सानू नियम पता हुंदे ने दिमाग दे विच तां साडियां गल्लां चलदियां हुंदियां ने कि असी रोड ते निकले आ अपना ख्याल रखना दूसरिया का ख्याल रखना पर देखो कई बारी काली इन्नी हुंदी है किसी थां ते पहुंचण दी काली इन्नी ज़्यादा हुंदी है कि उन्हां रूल्स नूं तां असी तोड़ दिंदे आ दूसरे की भी जिहड़ा है उसका भी ख्याल करना असी भुल जांदे आ। तो आज जिहड़ा है यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जिहड़ा है इसकी शुरुआत हो रही है 2026 दी और ये यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी आखिरकार की है क्या दसिए कि WHO द्वारा जागरूकता पैदा करने के लिए ट्रैफिक

बच के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं क्या तो खदड़ी वाले ठग जड़े ने ना, वो बस थोड़े ते ही नजरा बनाई रखते ने। उन्होंने पता होंगे कि तुम कितने जा रहे हो, किवें हो, किदा रह रहे हो, सब कुछ मैं क्या नज़र रखते हैं। और ये आम गल अजकल हो गई है, थोनू भी पता है, अजीब जी वखरे वखरे ढंग तरीके लभदे ने तुहाडे नाल ठगी करन दे। और फिर भी असी ने ना असी सानू पता भी होंगे कि इन्ह ठगा ने सानू ठगना, पर फिर भी असी जिहड़ा है इसका शिकार हो जाते हैं। तो साडा शहर जलंधर, मैं कह इन्ने स्मार्ट लोगों का शहर है ना, स्टिल इदा दे ठगा का शिकार बन रहे हैं। और ये जड़े ठग इन्ने तेज तर्रार रहे हैं कि हुण बजुर्गों अपना शिकार बना रहे हैं। हाल ही के जो मामला सामने आया ना किशनपुरा का, सामने आया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक ATM दे विच जड़ा है, ये ठग उत्थे खड़े शातर खड़े उत्थे बजुर्गों इन्हों के वालों देख इन्हों देखा गया। और पहला बुजुर्ग जड़े 72 साल के एक बुजुर्ग बुजुर्ग महिला इतने ATM दे विच जाती है, उत्थे पैसे कढ़वाण लगते हैं, किसी कारण करके पैसे नहीं उड़ निकलते ने, तो ATM जड़ा है उसनों जांच पड़ताल करने की कोशिश की जाती है। अचानक जड़ा है ये बंदा अंदर आता ATM दे अंदर, और उस महिला जिस जिस जिन्हों का नाम सुषमा सानी है, उन्होंने कहना है कि वो आते ने बैंक के खड़े होंगे ने, किसी कारण करके पैसे नहीं निकलते ना, तो ये इतने आ के खड़े हो जाते हैं, उसने नाल गल्लां बातें करनी शुरू कर देंगे ने, अपने आप नू बैंक का जिहड़ा जानकार दस के उन्होंने नाल उन्होंने गल्लां दे विच उलझा देंगे ने। महिला जिहड़ी है जो किसी तरह की जिहड़ी है पेमेंट दोबारा तो करन दी कोशिश करदे आ या पैसे कढ़वाउण दी कोशिश करदे आ, तो उस दौरान जिहड़ा है इस व्यक्ति दे वल्लों पिन देख लिया जाता है, और बाद दे विच उसनू ही मदद करन दे बहाने किसी तरह भी मिनटा सकिंटा दे विच ही उसका कार्ड बदल लिया जाता है। और इस बुजुर्ग महिला नू पहला तो पता नहीं लगता कि उसके हथों कार्ड निकल गया, पर कि दूसरे जदों महिला देखती है कि उसने हाथ के विच तो किसी होर बैंक का जिहड़ा है एक डमी कार्ड है, तो उसने पता लग जाता कि हाँ उसके नाल ठगी हुई है। और जदों तक इस ठगी नू समझ पाते, जदों तक उन्होंने इस चीज़ की शिकायत कर पाते, तो उन्होंने ATM नू बदल के जिहड़ा है पहला तो ही 30,000 रुपये तक दे जिहड़ी है बैंक दे विच ATM दे राही ठगी कर ली गई सी। बस इन छोटिया छोटिया चीज़ों का ना थोड़ा जहा ध्यान रखने की कोशिश थोनू अज तो ही करनी चाहिए है। जेकर तुसी पहली गल तो है कि घर के कोई बुजुर्ग ने, तो अगर तुसी ATM जानते भी हो तो वैल एंड गुड है कि तुसी जानते हो ATM का किद्दां इस्तेमाल करना, पर जानते हो तो घरों किसी यंगस्टर नू लेके जाया जावे, उसकी मदद दे नाल ही जड़ा है इस तरह पैसे कढ़वाउण दा कोई कम किया जावे। इस तों इलावा कोई भी अजनबी तुहाडे कोल उस टाइम दे उत्ते ATM ते आउंदा, तां उससे अनजान व्यक्ति नू उस टाइम ते पहला वाही ATM तो बाहर बोल दिता जाए कि थोड़ा वेट कर लिया जाए, किसी भी व्यक्ति के सामने अनजान व्यक्ति के सामने ATM पिन ना भरया जाए, मशीन जी ऑपरेटर ऑपरेट करने की कोशिश ना की जाए। और इस तों इलावा पिन एंटर करते समय तुसी कीपैड जिहड़ा उसनू दूसरे हाथ के नाल ढक सकते हो, कोड चैक करो, और ट्रांजैक्शन तो बाद जिहड़ा है कार्ड जिहड़ा है उसनू प्रॉपर तरीके चैक किया जाए। थोड़े ATM तो अगर बाहर भी निकलते हो तो

FM-band 102.7 MHz से 103.6 MHz तुसे सुन रहे हो FM रेबो चैनल और मैं हाजी थोड़ी अपनी आज अंजली 8:40 हो गए ने सवेरे हुण वेला हो गया जी प्रोग्राम थोड़े अपने अड्डी टप्पा दा सो आओ

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

स्कीम दे टैलीलॉ न्यायबंधो कानूनी साक्षरता ते जागरूकता प्रोग्राम नाल जुड़ो। कानूनी मदद टैलीलॉ ते टोल फ्री नंबर 1444 ते वेबसाइट www.tallylaw.in तो प्राप्त की जा सकती है।

ईडी वालों ग्रेटर मोहाली एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी तो जमीन की वरतों च तब्दीली बारे लाइसेंस धोखाधड़ी के संबंध के पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ 12 थावां ते छापेमारी। बीजेपी पंजाब दे एक वफद ने डीजीपी गौरव यादव नाल मुलाकात कीती अते झूठे भड़काऊ अते बेबुनियादी बयान देन दे दोष हेठ मुख्यमंत्री भगवंत मान विरुद्ध एफआईआर दर्ज करन दी एक शिकायत सौंपी। पंजाब खेतीबाड़ी विभाग दे वल्लों फरीदकोट दे विच गैर कानूनी खाद अते कीटनाशक पैकेजिंग यूनिट दा पर्दाफाश। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री श्री वरिंदर कुमार गोयल ने राजस्थान फीडर नहर की रीलाइनिंग दे चल रहे काम का जायजा लिया अते अधिकारियों नू काम निर्धारित समय दे विच मुकम्मल करने के निर्देश दिते। साउदी अरब ने अपने फौजी टिकाणियां अते हवाई खेतर दे विच अमरीकी फौज की पहुंच रोकी। आईपीएल क्रिकेट च बीती रात लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने डकवर्थ लुइस विधि राही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नू 9 दौड़ा नाल हराया। इस हुण तक दियां एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

मैं कह रही मैं कह रही प्रोग्राम शुरू हो गया है जी। 9:11 हो रहे ने और प्रोग्राम दे विच गलबात अज खास होनी है जी रोड सेफ्टी नू लैके कि आखिरकार जदों असीं घरां तों निकलदे आ रोड दे उत्ते निकलदे आ तां साडी सोच साडा दिमाग साडा विचार जिहड़े साडे विचार ने की हुंदे ने असीं की सोच के घर तों निकलदे आ जदों असीं गड्डी टू व्हीलर हो गया चकते हैं या फिर असी चकते मतलब उदा नहीं मुंडिया तो नहीं चकना मतलब कि उसनों स्टार्ट करते हैं घरों निकलते हैं तो या फिर फोर व्हीलर हो गया थ्री व्हीलर हो गया और जो गड्डी तो असं बैठते हैं तो की सोच होंगी है। बहुत ही एक आम जहा विचार ये होंगे कि असी सुरक्षित जाना घरों निकलना सुरक्षित ही घर वापस आना पर उस दौरान बहुत ही आम जे सड़की नियम ने जिन्हों का असी पालन करते हुए रोड के उत्ते निकल सकते हैं। सब तो पहला तो ये गल है कि जो कहते ना उम्र हद सब तो उम्र तो पहला सानू कोई चीज़ मिल जाए तो शायद उस चीज़ की असं कदर करना भूल जाते हैं और यही चीज़ यही है कि अजकल असी ये देखिए कि पेरेंट्स जड़े ने पेरेंट्स नू ही ओबियसली सवाल करांगे कि पेरेंट्स जड़े ने ना स्कूल जाने वाले बच्चे ने उन्होंने बाइक्स मोटरसाइकिल एक्टिवा कुछ भी हो गया ये सब उन्होंने टू व्हीलर्स लैके दे देंगे ने स्कूल कॉलेज स्कूल जाते हैं कॉलेज चलो मनो उन्होंने एज होंगी है पर स्कूल हले छोटे छोटे तुम्हें देखा होगा रोड्स के उत्ते 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे होंगे ने या उस तो भी घट क्लासिस के बच्चे होंगे ने एक्टिवा के उत्ते आप तो जा रहे होंगे ने पर नाल दी नाल उन्होंने वालों भैन भरावों भी पिछे बिठाया होंगे और स्कूल्स तो छुट्टी के टाइम के उत्ते जो बच्चे निकलते हैं ना उन्होंने तो शायद डर नहीं लगता पर देखने वाले जरूर डर जाते हैं कि इन्नी छोटी उम्र के पिछे ये टू व्हीलर सामभ रहे हैं रोड के उत्ते चलणगे तो अपनी जान भी खतरे के पाएंगे और दूसरों भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अजिहे दे विच पेरेंट्स के लिए एक ही गल एक ही सलाह यही होंगी है कि उम्र तो पहला उन्होंने ये व्हीकल्स जड़े ने ना वो ना दिते जान उम्र होने के उत्ते सब तो पहला तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करन लाइसेंस के लिए एक तो चलो पहला बनता है लाइसेंस और बाद विच प्रॉपर टेस्ट के नाल जो उन्होंने लाइसेंस मिलता अपने आप उस टेस्ट के विच पता लग जाता कि वह किस काबिल ने अगर उन्होंने लाइसेंस मिलना चाहिए तो किस तरह उन्होंने काबिलियत के आधार के उत्ते उन्होंने लाइसेंस मिलेगा जेकर उन्होंने लाइसेंस देने वाले जो अथॉरिटीज़ ने उन्होंने लगे कि हले बच्चा इन्ना ज़्यादा ट्रेन नहीं है टू व्हीलर सामभण के लिए या फिर होर व्हीकल सामभण के लिए तो ओबियसली उसनू होर ट्रेनिंग देने दे लिए कहेंगे या फिर दोबारा तो उसनू उस लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कहेंगे। सो उस टाइम के उत्ते पेरेंट्स नू समझना चाहिए कि भाई तुसी समझो और तुसी ये ख्याल करो कि बच्चे नू उम्र तो पहला ये व्हीकल सिटी ने ना ना दिते जान और उस तो इलावा जेकर तुसी रोड ते निकलदे हो तो आम जिहड़े सड़की नियम ने उन्हां दा पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब तो पहला तो यह कि तुसीं सड़कां ते निकलदे आ तां हैलमेट सीट बैल्ट जिहड़ी जरूर पाउणी है दोपहिया वाहन चलाउंदे हो तो हमेशा जिहड़ी है तुसीं ISI मार्क वाले हैलमेट पाउणे बहुत ज़्यादा जरूरी ने कार ड्राइव करदे हो तो सीट बैल्ट लगानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी तरह का नशा करके या फिर ड्रिंक करके तुसीं गड्डी ना चलाओ ये थोड़े लिए नुकसानदेह होएगी नाल दी नाल दूसरे होर लोगों के लिए भी नुकसानदेह होएगी और सो शराब पी के या फिर कोई भी होर नशा करके हुए गड्डी ना चलाओ ये भयानक हादसे का कारण बन सकती है। इस तो

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FMN 102.7 MHz, 103.6 MHz प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो, तुसी दिल अपना पंजाबी, अपनी आरजी अंजलि दे नाल।

0: जी तुसीं मैसेज भेजिया और वाकई जिहड़ी तुसीं फोटो भेजी है और उस दे ओह भी इक कहिंदे ओह भी सोहणी याद ही हुंदी है। साडे कोल भी सर्टिफिकेट्स पे हुंदे ना जदों असीं कदी देखदे आ ना उस टाइम दे उत्ते जुड़े हुए साडे एक्सपीरियंस जुड़े ने उस टाइम दा ओह पूरा मोमेंट सानूं याद आ जांदा है। और थैंक यू सो मच और एक्सपीरियंस जिहड़ा तुसीं वाकई ही ये गल भी सांझा कीती है कि जो हैवी व्हीकल्स ने ट्रक ने जदों ओह लंघते होंगे है ना एक तो पहला है कि अपनी जान नू बंदा आप ही बचावे उन्हां ट्रक्स ट्रक चलाउण वालिया तो क्योंकि वो सिर्फ अपने ट्रक का मैं क्या ख्याल रखते ने निकली जाते ने निकली जाते ने कई वड्डे हैवी जिहड़े ट्रक ने कई बार असीं देखिया कि ओवर स्पीड दे करके या फिर क्रॉस करन दे चक्कर दे उत्ते दूसरी गड्डी नू क्रॉस करन दे चक्कर दे उत्ते इस तरह के हादसों नू सद्दा दे दिंदे ने। सो बीते कल दी तुसीं गल दसी है वाकई ही बच्चा इस वेले दुख दे विच होएगा और सदमे दे विच भी होएगा पर जो ट्रक ड्राइवर सीगा उसनू शायद दूसरा कोई ख्याल भी ना आया होवे वो टक्कर मार के निकल गया। सो अजिहे समय दे विच अपने आप नू सुरक्षित रखना ही साड़ी पहली जिम्मेवारी है। सो प्रोग्राम दे विच अगला मैसेज किन्ना दा आया जी किन्ना दा आया वो असी सुन लैने आ।
1: मैडम जी, मेरे वालों यानी गुरविंदर बीर सिंह पट्टी डिस्ट्रिक्ट तरन तारण वालों आप जी नूं अते आप जी की समुची टीम नूं सतकार सहित सत श्री अकाल जी। ते मेरे जेड़े जेड़े वीर सरोते लेंदे पंजाब चढ़ते पंजाब जां दुनिया के जिते भी वसदे ने उन्हां सारयां नूं ही सिर झुका के मेरे वालों सत श्री अकाल जी। आप जी सदा तंदुरुस्त रहो रब धारे मेहर भरिया हाथ रखे। भैन जिहड़ी गल तुसीं कर रहे हो सेफ्टी वास्ते आपां जदों भी घरों कोई व्हीकल लैके निकलदे हाँ तो सब तो पहला आपां नूं एक रब अगे अरदास करनी चाहीदी आ कि महाराज मैं सफर ते जा रहा वा आप जी मेहर करो मैनू समत बख्शो कि मेरा सफर सुहाणा होवे जो आप जी की कृपा नाल ही हो सकता है। ते गड्डी स्टार्ट करन तो उस टाइम दे उत्ते ही अपना सेफ्टी बेल्ट लाओ तुरन लग्यां अपनी ब्रेक जरूर चैक करो रस्ते दे विच तुहानू कदे भी गड्डी खिलारन दी जरूरत पैंदी आ ते बिल्कुल एक साइड दे उत्ते कच्चे थां ते ला के गड्डी अपनी जिहड़ी आ उह खिलारो तां कि आउण जाण वाले नूं किसे नूं कोई प्रॉब्लम ना आवे। बेल्ट हमेशा अपनी सीट बेल्ट ला के रखो जदों भी कदी रैड लाइट आउंदी आ उत्थे ब्रेक मारो वेखो फिर चलो। रेलवे क्रॉसिंग आउंदी आ कई थावां दे उत्ते जिहड़े आ उह फाटक बगैर अपने आदमी रेलवे दे तो बगैर हुंदे ने उतों भी सानू देख के चार चुफेरे फिर जिहड़ा उह क्रॉसिंग करनी चाहीदी आ। इस तरह ही सानू जदों व्हीकल पास करदे आ पास दिंदे आ उदों भी सानू शीशे राहीं अपनी सावधानी वरतनी चाहीदी आ ते अपने बचाओ विच ही बचाओ है। अपना बचाओ करोगे तो किसी का भी बचाओ होगा। तो मतलब जिस तरह आप अपने परिवार को अहमियत दिने अपन गड्डिया दिने अपने आप को दिने इस तरह सानू दूजे लोगों भी अहमियत देनी चाहिए है। मेरे वालों आप साहब जी का दिन शुभ होवे रब सारे की कृपा बनाई रखे धन्यवाद जी।
0: थैंक यू सो मच जी तुसीं मैसेज भेजिया सानू और वाकई ही थोड़े मैसेज थोड़े विचार जिहड़े ने थोड़ियां गल्लां ने इह आम जिहियां गल्लां ने। असीं रोड ते निकलदे हां तां असीं ठीक है अपना ख्याल कर लैंदे हां जदों असीं हाईवेज़ ते निकलीए आसा पासा देखिए अगर गड्डी रोकण दी जरूरत पैंदी है तां आसा पासा देख के फिर गड्डी नूं साइड ते लगाया जावे जस्ट विच ही असीं बस अपनी मर्जी दे नाल अपनी जरूरत दे मुताबिक उसनूं गड्डी नूं उत्थे खड़े कर दिए इह सही नहीं है। और रेलवे क्रॉसिंग दी तुसीं गल कीती है वाकई ही असीं कई ऐसे फाटक देखे होंगे है जिथे कि कोई कर्मचारी नहीं होंगे और गड्डी लंघनी है जो टाइम ठीक है गड्डी की आवाज़ आ जाए तो लोग रुक जाते हैं पर ना आवे कई बार तो उत्थे ही वड्डे हादसे हो जाते हैं। अजिहे दे विच आप सतर्क रहो जदों भी इदा की कोई रेलवे क्रॉसिंग आती है तो उत्थे आप ही ठहर जाओ अपन गड्डिया आप ही स्लो कर लवो थोड़े उस वेले जान मैं क्या उन्होंने पलों के ही बच जाती है कोई वड्डा हादसा होने तो रुक जाता है। प्रोग्राम दे विच अगला मैसेज किन्ना दोस्तों का आया है आजो पहला सुनते हैं और तुसी अपने मैसेजेस हुण की भेजने तो टाइम हो गया हुण रह दो तुसी आजो पहला सुनते हैं मैसेज।
2: दिल अपना पंजाबी मैडम जी थानू ते तुहाडी सारी टीम नू प्यार भरी सत श्री अकाल है जी। मैं जे एस मुल्तानी जलंधर तो एक गीत दी दो कलैना लैके हाजिर होया जरा कबूल करना जी। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ

FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी सुन रहे हो FM रेनबो चैनल। स्वेते 10 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस। पछमी बंगाल च भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय निगरान अमित शाह अज कोलकाता दे विच विधायक दल के नेता की चोण लई पार्टी के नवे चुने गए विधायकों नाल मुलाकात करनगे। तमिलनाडु च सरकार गठन नूं लैके अड़िका जारी। सब तो वड्डी पार्टी नूं हमायत देण दे मुद्दे दे विच VCK CPI अते CPI-M दी बैठक अज। वियतनाम दे राष्ट्रपति तो लाम ने मुंबई च भारत वियतनाम व्यापार फोरम नूं संबोधन करदिआं विश्व सप्लाई लड़ी दे विच भारत वियतनाम दी भूमिका ते जोर दिता। व्यापार अते सनअत मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व खेतीबाड़ी दृष्टिकोण दे विच भारत दी स्थिति नूं मजबूत करन दे लई वख-वख उपावां दी समीक्षा कीती। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश दे सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन तो वध हो गए ने। ए मात्रा वफर स्टॉक या फिर लोड़ पैण दे समय दे विच लोड़ींदी मात्रा तो करीब 3 गुणा है। ईडी वालों ग्रेटर मोहाली एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी तो जमीन की वरतों च तब्दीली बारे लाइसेंस धोखाधड़ी के संबंध के पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ 12 थावां ते छापेमारी। बीजेपी पंजाब के एक वफद ने DGP गौरव यादव नाल मुलाकात की झूठे भड़काऊ और बेबुनियादी बयान देने के दोष हेठ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान विरुद्ध FIR दर्ज करने लई एक शिकायत सौंपी। पंजाब खेतीबाड़ी विभाग के वलों फरीदकोट के गैर कानूनी खाद और कीटनाशक पैकेजिंग यूनिट का पर्दाफाश। पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री बरेंद्र कुमार गोयल ने राजस्थान फीडर नहर की रॉयलिंग दे चल रहे काम का जायजा लिया और अधिकारियों को काम निर्धारित समय के मुकम्मल करने के निर्देश दिए। साउदी अरब ने अपने फौजी टिकाणियां अते हवाई खेतर दे विच अमरीकी फौज की पहुंच रोकी। IPL क्रिकेट दे विच बीती रात लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने डकवर्थ लुईस विधि राही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नूं 9 दौड़ां नाल हराया। ए सन हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस।

102.7 सुन रहे सारे श्रोतियां का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी दोस्त आजे निवेदिता ते लेके हाजिर हां प्रोग्राम गीत बहार। वेल प्रोग्राम गीत बहार दे विच गीतां दी लगेगी बहार ते नाल नाल जानकारियां दा सिलसिला भी रहेगा जारी। तो सो तुसी किते भी नहीं जाना, बने रहना इसी तरह ही मेरे नाल, क्योंकि प्रोग्राम दा आगाज़ कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीत दे नाल।

प्रोग्राम चल रहा है जी, गीत बहार ते गीतां दी लगी हुई है बहार, पर हुण आ गई है मेरी भी वारी। ते दोस्तों, मैं ना तुहानू कहना सी कि एक ना टू डू लिस्ट जरूर बनाया करो। टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट मतलब कि जिहड़ा काम असीं अज करना, बेशक सानू याद हुंदा है कि एवी करना है, एवी करना है, एवी करना है, पर दिमाग दे विच टू डू लिस्ट दी बनाण दी बजाय जेकर असीं कॉपी पेन ते अपनी डू लिस्ट बना लीए ना, उहदा बहुत फायदा है। अक्सर तुसी सुनिया होना है जो पुराने लोग हुंदे सी ना, वो जरूर अपने कम्मां नू लिखदे हुंदे सी। उहदे नाल की हुंदा दोस्तों, जिहड़ा साडे दिमाग दे विच बर्डन पिया हुंदा ना, वो कॉपी पेन ते आ जांदा ते साडा दिमाग ना हल्का हो जांदा है, और फिर असी कंसंट्रेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। सो डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होंगे। कई बार की होंगे कि काम के रुझेवियां दे विच ना साडे कोलो कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है, तो जदों टाइम लंघ जाता फिर याद आता ओहो यह भी काम मैं करना सी। तो कई बार की होंगे डू लिस्ट बनाने का यह फायदा होंगे, एक काम जदों असी कर रहे होंगे तो सानू लगता है कि हाँ यह जिहड़ा लिखा होया ना यह भी काम नाल दी नाल हो सकता है, तो कई बार थोड़े टाइम के ज़्यादा काम भी साडे निपट जाते हैं। सो कोशिश करो जेकर डू लिस्ट रोज़ दी रोज़ बनाई जाए तो बहुत ही वधिया, नहीं तो तुसी दो दिन दी तीन दिन दी कट्ठी भी बना सकते हो, पर रोज़ दी टू डू लिस्ट बनानी बहुत ही वधिया हुंदी है। अपने लोंग टर्म्स नू शॉर्ट टर्म दे विच डिवाइड करो, तो शॉर्ट टर्म प्लैन नू फिर असी टू डू लिस्ट दे विच जदों कन्वर्ट करते हैं तो साडे जिहड़े काम ने उह सारे दे सारे निबड़ भी जांदे ने ते टाइमली भी हो जांदे है, ते फिर साडा दिमाग भी हल्का उह फुल हो जांदा है। ते ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੀਤ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ।

तुझे कितना चाहने लगे हम तिजी, असि भी अपने स्रोतिया नू बहुत ही ज्यादा चाहने हाँ, ता ही था सानू उना दी सेहत की बहुत ही टेंशन होंगी है कि ये बिल्कुल सेहतयाब रहने चाहिए है, मानसिक शरीरिक तौर पर फिट एंड फाइन रहने चाहिए है। सो दोस्तों, इसे सिलसिले नू अगे तोरते हुए मैं थानू दसदी हाँ कि समाइल थैरेपी ते थैंक्स थैरेपी है ना जिहड़ी, ये बहुत ही कारगर चीज़ है। तुसी सोचोगे कि यह किदां दी थैरेपी है। यस, ये बहुत ही कारगर थैरेपी है, समाइल थैरेपी और थैंक्स थैरेपी। समाइल थैरेपी ये होंदी है कि जिन्नी मर्जी दिक्कत होवे, जिन्नी मर्जी जिन्ना मर्जी कष्ट होवे, सानू मुस्कुराना सीखना पएगा। बेशक सानू लगता है कि नहीं, इन्नी वड्डी मुसीबत आई है तो मैं पब्लिक दे विच तां नहीं हस सकता, बेशक पब्लिक दे विच ना हसो, बट अपने दिमाग दे बोझ नू हल्का करन दे लई सानू अपने कमरे दे विच आके या कल्ले हो के मुस्कुराउण दी हैबिट बनानी चाहिए है। जदों असीं अपने आप नाल हसदे हाँ, अपने आप नाल मुस्कुराने हाँ, तो साढ़े तो वड्डा साढ़े लिए कोई दोस्त नहीं होंदा, तो इस दे नाल जिहड़ा साडा बर्डन है वह घट जाता है। तुसीं एक ट्राई करके देखियो, जिन्ना मर्जी गुस्सा चढ़िया होवे, जदों असीं जबरदस्ती ही चाहे मुस्कुराउण की कोशिश करांगे ना, गुस्से दे विच भी मुस्कुराउण की कोशिश करांगे, तो सानू लगेगा कि हाँ, दिमाग ते जिहड़ा बोझ सी वह हौली हौली उतर गया। यस, जदों असीं समाइल थैरेपी करते हाँ तो किन्नियां ही बीमारियां भी चुटकी बजांदिया ही उड़ जांदियां ने, क्योंकि साडा दिमाग हल्का हो जाता है, तो शरीर दियाँ अद्धियां बीमारियां दिमाग की थकान करके होंदियां। सो समाइल थैरेपी है जिहड़ी बहुत ही कारगर है। जदों हसन का मौका होवे उदों तो असीं खुल के हसना ही हसना है, जदों नहीं भी मौका तां भी हसो। किवें हसीए? जदों असीं किसी होर नूं हसाने आ, किसी होर दी खुशी का कारण बनो, तुहानूं खुशी अपने आप ही वापस मिल जाती है। तो ये तो हो गई जी समाइल थैरेपी। तो थैंक्स थैरेपी की होंदी है वह मैं तुहानूं दसांगी गीत तो बाद। सो तुसीं इंजॉय करना है गीत, बने रहना है प्रोग्राम गीत बहार दे विच। मैं प्ले करन लगी हाँ जी आतिफ असलम ते श्रेया घोषाल दी आवाज़ दे विच बहुत ही प्यारा जिहा गीत। वापस आओगे तो फिर असीं गल करांगे थैंक्स थैरेपी दी।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम गीत बहार ते दोस्तों गीतां दी बहार भी ताई चंगी लगती है जेकर साडे मन दे विच बहार होवे जेकर साडा मन खुश होवे ते मन नू खुश करन दे लई की करना है जी मन नू खुश करन दे लई असी खुश करना है किसे होर नू जी जदों असी किसे होर नू खुश करदे हाँ ते ओदी खुशी साडे अंदर अपने आप ही वापिस आ जाती है। कहिंदे है ना कि जो असी यूनीवर्स नू दिंदे यूनीवर्स सानू कई गुणा वधा के वह वापस दिंदा। सो जेकर असी किसे नू खुशी देवांगे किसे दी खुशी दा कारण बनांगे ते साडे लई खुशियां दे कई कारण अपने आप ही खड़े हो जाएंगे। वैसे भी जदों सानू अंदरों एहसास हुंदा है कि असी इस इंसान नू खुशी दित्ती है ते साडे अंदर एक अलग जी फीलिंग पैदा हो जाती है अलग जी भावना एक कहिंदे है कि अदुत्ती फीलिंग पैदा हो जाती है डिवाइन फीलिंग पैदा हो जाती है जिदे नाल असी प्योर फील करते हैं ते अपने आप ही खुशियां साडे आले दुआले मंडरान लग जांदियां ने। सो करना की है जी हर रोज़ किसी नू खुश करन दी कोशिश करनी है। किसी नू कॉम्प्लीमेंट दे सकते हाँ कि अज तुसी बहुत सोहने लग रहे हो या तुसी आ जिहड़ा काम कीता सी ना चाहे कई साल पहले ही कीता होवे वह बहुत वधिया सी। जदों असीं किसी की सराहना करते हाँ किसी की शलाघा करते हाँ तो खुश हो जाता है तो उसकी खुशी सानू भी खुश करेगी। हाँ कोई नाराज़ है कोई उदास है तो उसकी उदासी उसकी नाराजगी भी असीं उसके नाल सलाह मशवरा करके उसका दुख दूर करने की कोशिश कर सकते हाँ। तो जेकर असीं किसी की तकलीफ नू दूर करांगे तो अपने आप ही उसकी खुशी साड़ी खुशी दे विच तब्दील हो जाएगी। होर ने कुछ तो एक रोंदे हुए बच्चे नू ही हसा लिया जाए जदों असीं किसी रोंदे हुए बच्चे नू ही हसा लाँगे ना तो उसकी खुशी भी साड़ियाँ कई खुशियां का कारण बन जाएगी। सो जेकर खुशी का कारण कोई नहीं है तो असी आप जनरेट करिए असी आप अपनी खुशी का सबब बनीए तो जो असी अजिहा करन दी आदत बना लवेंगे तो फिर अपने आप ही खुशी साढ़े अंदर आ जाएगी तो फिर प्रोग्राम गीत बहार का मजा भी दुगना हो जाएगा। तो लो जी प्रोग्राम दे विच प्ले करन जा रही हाँ तुहाडे लई अगला गीत इंजॉय करो तो इसी तरह ही सुनते रहो FM रेनबो

तो से बनाया जी एफएम रेनबो दे नाल दी प्रोग्राम चल रहे गीत बहार ते गीत बहार दे विच दोस्तों सी बहुत सारी गल्लां कर लिया कि टाइम किदा प्लान करना है डिसिप्लिन फॉलो करना है ये करना है वो करना कि ना कुछ कर लिया सी थैंक्स थेरेपी दी गल कर ली स्माइल थेरेपी दी गल कर ली ते एक चीज होर मेरे दिमाग में आ रही सी और प्रोग्राम खत्म होने वाला है ते मैनू लग्या कि प्रोग्राम खत्म करन तो पहला ऐ वी डिस्कस कर ही लिया जाए सो दोस्तों अक्सर असी देखते हैं कि गर्मियों के विच ना अगजनी दियां बहुत घटनावां हो जांदियां ने ते असी उहदे लई पहला ही तैयार रहना क्योंकि गर्मी का मौसम आन वाला है ते असी पहला ही एहतियात वरतनी है क्यों ये घटनावां हुंदियां साडी अणगहली करके ते जेकर असी पहला ही सावधान रहांगे ते फिर इदां दियां घटनावां दूर दूर हो जांदियां ने साडे कोलों सो असी की करना है जी एक तो अपने घर के ओवरलोडेड सॉकेट नहीं रखने असी की करते हैं जी एक ही पॉइंट पर किन्ने सारिया चीज़ा मोबाइल भी लगा देने वो भी सारा कुछ है ना असी ओवरलोडेड सॉकेट अवॉइड करने हैं और दूसरा किचन के अन अटेंडेड कुकिंग नहीं करनी ये नहीं कि पतीला रखिया तो आप बार किसी होर काम पर लागे नहीं अन अटेंडेड कुकिंग नहीं करनी और जड़ा स्टोव वाला एरिया है उन्हू क्लीन रखना और कोशिश करो कि एक बारी स्टोव दी क्लीनिंग करवा ली जाए और जड़ी बिजली दिया तारा ने साढ़े घर के जड़ी वायरिंग हुई हुई है जे कि पुरानी वायरिंग है तो वह भी चैक करवा लेनी चाहिए क्योंकि अक्सर गर्मी के विच तारा मेल्ट हो जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाए ने शॉर्ट सर्कट हो जाते हैं सो असी की करना जी गर्मियाँ शुरू होने तो पहला ही वायरिंग की असी पहला चैकिंग करवा लीए और किचन दे विच जड़ा गैस स्टोव है साडा उहदी क्लीनिंग करवा लईए और सॉकेट असी ओवरलोडेड नहीं रखने बस ये छोटिया छोटिया गल्लां दा असी ध्यान रखांगे तो फिर कई बारी वड्डे हादसे भी टल जांदे है बस सावधानी हर जगह वरतनी जरूरी है सो दोस्तों इस दे नाल ही प्रोग्राम दे विच तुहाडे तो इजाजत लैण दा हो गया समा पर मैं किते नहीं जा रही क्योंकि अगले प्रोग्राम दे विच फिर तुहाडे नाल इसे तरह ही बनिया रहेगा साथ पर हुण इस प्रोग्राम नूं सानूं इत्थे ही वाइंड अप करना पैना ते जांदे जांदे इस प्रोग्राम का लास्ट गीत असी जरूर इंजॉय करांगे ते फिर कुछ ही पलों के बाद मैं थानू मिलांगी अगले प्रोग्राम पंजाबी तड़का दे विच ते हुण इंजॉय करते हैं जी गीत बहार का ये लास्ट गीत

एंजॉय कर रहे जी 102.7 एफएम रेनबो दे दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो गया है पंजाबी तड़का। पंजाबी तड़का विच मैं निवेदिता रहांगी थोड़े नाल। ते दोस्तों तुसी की करना है जी, जिवें कि तुसी जानते हो, तुसी करना है सानू नंबर डायल जी, क्योंकि यह है फोन इन प्रोग्राम ते थोड़े फोनां दा सानू रहिंदा है बेसब्री ते नाल इंतजार। सो तुसी डायल करना जी 081-43-174। ये नंबर डायल करके तुसी साडे नाल राबता कायम कर सकते हो। कोई गलबात, कोई कहानी, कोई किस्सा, कुछ भी तुसी साडे नाल साझा करना चाहते हो, जां साडे जरिए तुसी स्रोतियां नाल गलबात करनी चाहते हो तो वह भी कर सकते हो, ते अपनी फरमाइश का गीत भी प्ले करवा सकते हो। सो प्रोग्राम का सिलसिला करदे हां जी शुरू। तो प्रोग्राम की शुरुआत विच पसंद होएगी मेरी, यस, पहला गाना मैं अपनी पसंद का चलावांगी, तो उस तो बाद दे गाने

कानूनी सेवाएं अथॉरिटी एक्ट 1987 दी धारा 12 के तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तो प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सह जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: इंजॉय करो जी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है जी पंजाबी तड़का। पंजाबी तड़का तुसी जानते हो कि इस दे विच साडे कॉलर्स साडे नाल गलबात करदे ने ते पहुंचे ने साडे तक अगले कॉलर। इसे सिलसिले विच गल करदे हां इनां दे नाल। हैलो
2: हैलो नमस्कार जी।
1: सत श्री अकाल जी। कौन गल कर रहे हो?
2: मास्टर मोहनलाल सीतामढ़ी जलंधर जी।
1: स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। मास्टर मोहनलाल पढ़ाए हो फिर?
2: हां जी हां जी।
1: ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਆਇਓ?
2: ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਫੀ ਕਾ ਗਈ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਆਇਓ?
2: ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਪੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੁੱਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ?
2: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀ ਸਾਰਿਆਂ
1: ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?
2: ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ
2: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ।

0: जी, बाजरे दा सिट्टा असी तली ते मरोड़िया। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ प्रकाश कौर ते सुरिंदर कौर जी दी आवाज़ ते विच एंजॉय कर रहे सी तुसी। गीत ते प्रोग्राम चल रहे जी पंजाबी तड़का। लगातार साढ़े दोस्त कॉल्स मिला रहे ने ते कुछ जो लकी वंस ने उन्हां दी कॉल लग भी रही है। हैलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल मैडम जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: जी मनप्रीत सिंह बोलता जी, पिंड मगरिंदपुरे तो निक्की मक्खी, जिला तरन तारण जी, बॉर्डर एरिया।
0: ओहो, मनप्रीत सिंह जी पूरा एड्रेस साढ़े को पहुंच गया है ते हुम हुम आके असि पहुंचन लगे हां तुहाडे घर। तुसी पूरा दा पूरा एड्रेस दस दिता है ते सारिया ने नोट कर लिया। सारा एरिया असि रोशन कर दिता। की कर दे मनप्रीत जी?
1: टेलर दा काम करते हैं मैडम जी।
0: अच्छा जी, टेलरिंग कर दे हो। लेडीज सूट के जेंट सूट?
1: जेंट्स है मैडम जी।
0: अच्छा जी, ठीक है। ते फिर आज टाइम मिल गया? आज रश घट सी, कम घट सी आज?
1: मैं जी ए वक्त चाह दा टाइम होइंदा, थोड़ा जा फ्री हां, फोन ला लिया। हां जी, मिला लिया ते लग गया।
0: ते लग भी गया लकीली, है ना?
1: हां जी,
0: ठीक है। टेलरिंग दा शौक शुरू तो ही सी?
1: मैं जी ये छोटे होंदे ही डैडी करदे रहे, डैडी दे नाल ही फिर लगे रहे हां। मैं 10 सालां दा
0: बचपन च खेडां केडियां खेडदे हुंदे सी?
1: मैं जो गेंद आउंदी सी रबड़ दी, टाइयां खेडदे हुंदे जिहड़ियां एक दूजे उत्ते रखी दी सी ना गीटियां।
0: अच्छा, एक दूजे दे उपर गीटियां रखी दी हुंदी सी? मन तां नहीं पता, तुहानूं समझाउणा पैणा।
1: हां जी हां जी, ओह गेम बहुत खेडी है जी।
0: अच्छा, ते फिर हुण
1: जां इक गुल्ली डंडा हो गया, जां गुल्ली डंडा बहुत खेडे जी।
0: हां, ते ओह मारदे वी हुंदे सी किसे नूं गुल्ली जोर दी?
1: नहीं मैडम जी, वज वी जांदी सी मैडम जी, जो चढ़ाई दी तां डंडे ते जिहड़े लागे गाड़ियां कैच करदे सी। हां जी हां जी,
0: ठीक है। ते गुल्ली डंडा खेडदे खेडदे कदी अपनी रंजिश वी कड्डी वी अज इहनूं मारूंगा, है
1: रंजिश
0: नहीं गड्डी किसी नाल, है बस खेड के आ जांदे सी आपां। अच्छा, गीत दसो केड़ा सुनोगे? लौंग तवीतड़ियां, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया कॉल करन दे लई। जी फरमाइश हुई है सानू बलकार सिद्धू की आवाज़ के विच गीत सुनना है, लौंग तवीतड़ियां जरूर सुनावांगे। पर उस तो पहला सानू एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक लेना पैना है, उस तो बाद तुसी इंजॉय करोगे लौंग तवीतड़ियां। हाँ, अजे नंबर डायल करना नहीं भूलना, थोड़ा टाइम है, हो सकता है थोड़ी कॉल लग जाए। 0181 243 174 नंबर डायल कर सकते हो।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी पंजाबी तड़का। पंजाबी तड़का दे विच पहुंचे ने साडे कोल अगले कॉलर ते दोस्तों ए होन गए इस प्रोग्राम दे लास्ट कॉलर। आओ गल कर दे इन्हां दे नाल। हैलो
1: सत श्री अकाल।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी सुन रहे हो FM रेनबो ते हुन पेश ने FM न्यूज़ हेडलाइंस। पछमी बंगाल विच भारतीय जनता पार्टी दे केंद्रीय निगरान अमित शाह अज कोलकाता विच विधायक दल दे नेता दी चोण लई पार्टी दे नवें चुने गए विधायकां नाल मुलाकात करनगे।

इंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है होम स्वीट होम। सो तुहाडे घर नू बहुत सोहना बनाने की असी कोशिश करांगे, तुहाडी सेहत नू बिल्कुल तुहाडी सेहत नू असी तुहानू सेहतयाब करने की कोशिश करांगे, तुहाडे आले दुआले तुहाडे बच्चे तुहाडे पैट्स सब की गल करांगे। प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच बस तुसी बने रहना इसे तरह ही मेरे नाल, जाना किते भी नहीं है। हाँ, टिप्स ट्रिक्स नोट करन दे लई तुसी उठ के जा सकते हो, कॉपी पेन लिया सकते हो, ताकि जिहड़ियां असीं जानकारियां देईए ओह किते मिस ना हो जाण। सो तुसीं फटाफट कॉपी पेन चुक के लियाओ ते मैं प्ले करन जा रही हां तुहाडे लई प्यारा जिहा गीत। वापिस आओगे ते फिर जानकारियां दा सिलसिला असीं शुरू करांगे।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 FM रेनबो। ते प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम। तो दोस्तों होम स्वीट होम दे विच असी बहुत सारियां गल्लां करदे हां, क्योंकि साढ़े कोल बहुत कुछ होंदा गल्लां करन दे लई। ते हुण क्योंकि असी गर्मी दे जिक्र कर रहे सी कि गर्मी आने वाली है, ते असी किदां गर्मी दे नाल दो हथ करने है, किदां असी तैयार बर तैयार रहना। ते हुण मैं तुहानूं किचन वल लैके चलदी हां जी। किचन वल मतलब रेसिपी की गल करते हैं, तो रेसिपी अज असी जो डिस्कस करन जा रहे हैं वह है कोल्ड सैंडविच। क्योंकि गर्मियों के ना हल्का हल्का खाने दिल करता, हैवी खाने दिल नहीं करता हों, खास करके जो बच्चों के टिफिन रेडी करने होंगे है तो सूँ लगता है कि यार की बना के दईए, क्योंकि बच्चों ने टिफिन 2-3 घंटे बाद खोलना है तो उन्होंने थोड़ा फ्रैश फ्रैश भी लगे और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हैवी भी नहीं दे सकते। सो कोल्ड सैंडविच है जिहड़ा बहुत लाइट है, न्यूट्रिशियस भी है, ये तुसी अपने बच्चों टिफिन च भी दे सकते हो। जेकर तुसी घर भी ब्रेकफास्ट विच लेना चाहते हो या स्नैक्स विच लेना चाहते हो तो बहुत ही वधिया है। सो कोल्ड सैंडविच बनाना किदा है, ये मैं हजे तुहानू एक परसन के लिए रेसिपी दस रही हूँ। एक परसन के लिए तुसी की करना जी, ब्रैड लेने, 2 स्लाइस ब्रैड लो और दही 1 वड्डा चम्मच, दही लेना 1 वड्डा चम्मच, ब्रीक कटी हुई तुसी शिमला मिर्च ले सकते हो 1 छोटा चम्मच, ते ब्रीक कटी हुई गाजर ले लो 1 छोटा चम्मच, ते तुसी कॉर्नज ले सकते हो मक्की दे दाने बॉयल किए हुए 1 छोटा चम्मच तुसी वह ले लो, फिर काली मिर्च ते काला नमक ए ले लेना, और एक बोल दे विच दही ते ब्रीक कटियां हुई सब्जियां मक्की दे दाने काली मिर्च ते काला नमक मिला के असी उन चंगी तरह मिला लेना, उहदे विच पा के बोल दे विच चंगी तरह मिला लेना है। ते दोनों ब्रैड दे असी किनारे कट लेने हैं क्योंकि वह हार्ड लगते हैं, तो गर्मियों च नहीं खाए जाते। तो इस ते असी तैयार किया हुआ जिहड़ा मिश्रण है दही ते सब्जियां वाला वह उहदे ते लगा देना है, तो उपर दूजी ब्रैड रख देनी है। लो जी सैंडविच तैयार है, तो तुसी इहनूं तवे ते भी गर्म कर सकते हो, सेक सकते हो। जे तुसी टोस्टर यूज़ कर रहे हो तो तुसी उहदे विच भी सेक सकते हो, ग्रिल कर सकते हो। जेकर तुसी एदां भी खाना चाहते हो तो ये भी रेडी है जी, तुसी खा सकते हो। बड़े आराम नाल बहुत ही टेस्टी लगता है, तो हल्का भी लगता है। एक बारी मैं तुहानूं फिर तो इनग्रीडियंट्स ने जिहड़े वो दोहरा दे

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com

0: com या न्यूज ऑन aar.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रहे, ये कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जाएगा।
1: इंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम होम स्वीट होम। ते होम स्वीट होम विच असीं गल कर रहे सी कि बच्चियां दीयां छुट्टियां होण वालियां ने, गर्मियां दीयां छुट्टियां होण वालियां, समर वकेशन स्टार्ट होण वाले आ, ते बच्चे किदां घर दे कम्मां दे विच असीं माहिर बना सकदे आ। पर इस तों अलावा होर की बच्चे कर सकते हैं कि उहनां दीयां जिहड़ियां छुट्टियां ने ओह यादगार बन जाण। सो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हुंदा है और बच्चों के कोल जेकर कोई करन दे लई कुछ करन दे लई ना होवे तो फिर वो की करनगे, फोन या टीवी, ते जिदे नाल उन्हां दी क्रिएटिविटी खराब हो जाती है। सो सब तो पहला असी की करना है जी, टाइम टेबल बनाना है कि बच्चों ने किन्ना टाइम पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हुंदा, तो एक घंटा डेढ़ पढ़ाई दे लई बहुत हुंदा। जेकर असी सारा दिन ही करी जाइए कही जाइए पढ़ लै पढ़ लै पढ़ लै, तो उहदे नाल बच्चे भी इरीटेट हो जाते हैं, तो फोकस भी नहीं कर पाते। सो टाइम फिक्स होना चाहिए कि इसे टाइम ही पढ़ना है, तो उहदे नाल बच्चे चंगी तरह फोकस करके पूरी तरह तवज्जो दे नाल कंसंट्रेशन बना के पढ़ भी सकनगे, तो काम भी उन्हां दा जल्दी हो जाएगा। इस तो अलावा असी उन्हां नूं कोई क्लास लगवा सकते हैं, कौशल दी क्लास लगवा सकते हैं, पर कौशल दी क्लास उन्हां दे लई बर्डन नहीं होना चाहिए। सो बच्चे दा इंट्रस्ट पूछा जाए कि उसने की सीखना है, कि उसनूं ड्रॉइंग दा शौक है, उसनूं स्विमिंग दा शौक है, कराटे दा शौक है, कीड़ी चीज़ उन्हूं पसंद है, उहदी मर्जी दे नाल उहनूं सिखण लई भेजिया जावे, क्योंकि वह फॉर्मल सैटअप तो उहनां नूं छुट्टी मिली हुंदी है, स्कूल दे सैटअप तो उहनां नूं छुट्टी मिली है, तो फिर असी जेकर उहनां नूं उही फॉर्मल सैटिंग दे विच भेजदे हां, तो बच्चे कई बार इरीटेट हो जांदे आ। सो छुट्टियां नूं छुट्टियां वांग ही रखिए, तो उहनां नूं बन्नीए नहीं, बंद के उहनां तों काम ना करवाइए। और स्क्रीन टाइम सीमित होना चाहिए, जिवें कि 1 घंटा, क्योंकि जेकर असी पूरी तरह ही कहोंगे कि तुसी टीवी या मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना, तो फिर रिजल्ट की होएगा, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। सो बेहतर है कि टाइम फिक्स किया जाए, थोड़ा थोड़ा टाइम दिता जाए और 2-3 बार दे दिता जाए। अंतराल जेकर विच रखांगे तो बच्चा रेगुलर नहीं देखेगा, तो थोड़े टाइम देखने का कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होंगे। सो उन्होंने फिक्स किया जाए कि इन्ना चिर ही देखना है। और इस तो अलावा उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे नाल पजल, कहानी, ड्राइंग जदों असीं नाल बैठ के करांगे, तो फिर बच्चे भी दिलचस्पी लैंदे हैं, इंट्रस्ट लैंदे हैं। तो इस तो अलावा उन्हां नूं एडवेंचरस काम करवाए जाण। कई बारी पेरेंट्स वर्किंग हुंदे हैं ते वो छुट्टियां मनाण कई बारी नहीं जा सकते, नानी दादी दे घर या किसी रिश्तेदार दे घर या बाहर नहीं जा सकते, तो अजिहे विच की कर सकते हैं। इस दे लई घर ही असी एडवेंचरस काम करने हैं, असी छत ते चादर बिछा के उन्हां नूं पिकनिक मनाउण दे लई कह सकते हैं। जदों ठंडका जिहा हो जाता है, शाम का टाइम होवे, उदों तुसीं उन्हां नूं उत्थे पिकनिक दी सैटिंग करके दे सकते हो। बालकोनी दे विच कैंपिंग या रात नूं आसमान वल देखण दी योजना बना सकते हो। इहदे लई तुसीं आस पड़ोस दे बच्चे, उन्हां दे फ्रेंड्स, उन्हां नूं बुला सकते हो, तां कि बच्चे इंजॉय भी करन ते घर दे विच भी रहन, तां कि गर्मी दा ज़्यादा डर नहीं होए। और इस तो अलावा वो एंजॉय करनगे जदों घर दे विच कैंपिंग कर रहे होंगे। तो इस तो अलावा होर असी की कर सकते हैं, इस तो अलावा उन्होंने आज़ादी दिती जाए कुछ भी करन दी। जिवें बच्चा पेंटिंग कर रहा है, तो उन्हें प्रेशराइज ना करो कि परफेक्ट बनाओ, ऐदा नहीं ऐदा बनाओ, उन्हें जड़ी अंदर कला है उन्हें बाहर आन दो, उन्हें आज़ादी दो, रंग फैलान दे, ताकि बच्चा दबाव महसूस ना करे, घुट के दब के काम ना करे, उन्हें जो करता है करन दो, ताकि उहदा आर्ट है जिहड़ा उन्हें एक्सपोजर मिलेगा। और होर असी की कर सकते हैं जे पेरेंट्स दे कोल टाइम नहीं है किते बाहर जाण दा, पर इस दे दौरान तुसी उन्हां दे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी नूं तां बुला सकते हो, उन्हां नूं घर बुलाया जावे, ताकि बच्चे उन्हां दे नाल टाइम स्पेंड करन। ते इस दे नाल की हुंदा, बच्चे बहुत कुछ सीख जांदे है, उन्हां नूं किसी वड्डे दा साथ भी मिल जांदा है, ते कुछ सीखण दे लई भी उन्हां दे कोल चंगा मौका हुंदा। सो ये भी उन्हां दा मेमोरेबल टाइम होएगा जदों ग्रैंड पेरेंट्स दे नाल टाइम स्पेंड करदे हैं। सो छुट्टियां दी असी पूरी सैटिंग कर दिती है जी, कि बच्चियां नूं ऐ करवाना है, इदां तुसी करवा सकते हो, असी पूरी प्लैनिंग थानू दस दिती है, हुण करना तुसी है, बस बच्चियां नूं प्रेशराइज नहीं करना। ते होम स्वीट होम दे विच हुण मैं प्ले करन जा रही हूँ जी तुहाडे लई गीत, गैरी संधू दी आवाज़ दे विच। फिर वापस आना है, मैं थानू कह रही हूँ, क्योंकि मेरे कोल अजे भी कुछ खास है।

इंजॉय कर रहे हो जी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो गया है मिड डे मेलेडीज। उम्मीद है कि ताड़ी दोपहर सुखावी गुजर रही होएगी। ते दोस्तों आज मिड डे मेलेडीज के सफर दे विच असी गल करांगे दुनिया दी जहान दी। असी अजिहे गीत प्ले करांगे जिदे विच दुनिया जहान संसार ए वर्ड्स यूज होंदे हैं। सो प्रोग्राम

नो शुरुआत पर लेके जाने आगाज करते हैं प्रोग्राम दा। कहते हैं कि दुनिया एक आईना है, तुसी उनू जिस तरह देखते हो ना ये तुहानू उही कुछ दिखाती है। कदी एक मेला लगती है ते कदी खूबसूरत सुपना भी लगती है। तो दोस्तों सफर की शुरुआत करते हैं 70 के दहाके के एक अजिहे गीत नाल जो सानू दसता है कि इस दुनिया विच प्यार तो वड्डा कुछ भी नहीं हुंदा। इंजॉय करते हैं गीत तेरे बिना जिंदगी से, किशोर कुमार ते लता मंगेशकर जी की आवाज़ के खूबसूरत गीत।

0: तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, किन्नी गहराई है ना बोलां विच। दोस्तों असी सारे ही इस दुनिया दे मुसाफिर हाँ, आने अपना किरदार निभाते हैं तो फिर अगले पड़ा दे वल चले जाने हैं। पर इस जगत की रीत है कि इत्थे मुहब्बत दे रंग कदे भी फिक्के नहीं पैंदे। जदों असी 80 दे दहाके वल वधदे हाँ तां संगीत विच इक वक्री ही मासूमियत नज़र आउंदी है, जिथे दुनिया की भीड़ विच भी दो दिल एक दूजे नूं लभ ही लैंदे ने। ते आओ सुणदे हाँ 80 दे दहाके दा एक होर लाजवाब गीत।
1: एक रोज़ जिंदगी के रूबरू आ बैठे, जिंदगी ने पूछा दर्द क्या है, क्यों होता है, कहाँ होता है ये भी तो पता नहीं चलता, तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा मैं तुम्हारी जुड़वा हूँ, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। सचमुच ये संसार सानू हैरान करन दा कोई मौका नहीं छड़ता, कदे धुप्प है ते कदे छां। पर जदों कोई साथी हाथ फड़ के चलण वाला मिल जावे तां ये जहान स्वर्ग वर्गा लगन लग पैंदा। तो दुनिया दी सारियां खुशियां सिर्फ एक दूजे दे साथ विच ही मिल जांदियां ने। प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो मिट्टी मेलेडीज, तो मिट्टी मेलेडीज के अगला गीत एंजॉय करने तो पहला एक छोटा जहा कमर्शियल ब्रेक।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम मिड डे मेलेडीज। दोस्तों, किसी ने कहा है कि दुनिया एक रंगमंच है, तैसी सब कठपुतलियां, पर मैं कहनी हूं कि दुनिया खूबसूरत गीत है पर जेकर सुर मिल जान। सो सुरमई सफर नू अगे तोरते हुए एंजॉय कर दें अगला गीत।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी मीठे मेलेडीज। दोस्तों इस संसार की एक अजीब रीत है, इत कुछ भी स्थिर नहीं है। वक्त बदलता है, मौसम बदलते ने, तो इंसान भी। पर जो चीज़ स्थिवी रहती है, जो चीज़ हमेशा रहती है, वो है मोहब्बत। कहते ने कि जहान विच जेकर प्यार ना होंदा तो दुनिया रेगिस्तान वर्गी होनी सी। तो अगला गीत 80 के दहाके का वो नगमा है दोस्तों, जो दसदा है कि जदों दो दिल मिलते ने तो पूरी कायनात जश्न मनाउंदी है। इंजॉय करते हैं किशोर कुमार ते लता मंगेशकर जी की आवाज़ दे विच ए गीत।
1: क्या कहा?

प्रोग्राम चल रहा है जी मिडे मेलोडीज। दोस्तों आज ऐसी संसार जगत जहान दे कई रंग देखे ने, पर सब तो बड़ी सच्चाई ये है कि सारी दुनिया ही साढ़े अंदर है। जेकर असी खुश हाँ तो सानू दुनिया हसती हुई नजर आती है, तो जेकर असी उदास हाँ ना तो फिर चांदनी भी चुभती है। सो अगला गीत जो जिंदगी दे इस फलसफे नू बखूबी बयान कर रहा है, संसार दे फलसफे नू बखूबी बयान कर रहा है। इंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज़ के अगला गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
1: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: आकाशवाणी वालों देश व्यापी जश्नां दे हिस्से वजों पंजाब विच भी अपने जलंधर ते पटियाला स्टेशनां ते पाल के 9 मई नूं एक विशेष वाकाथॉन दा आयोजन किया जा रहा है। यह समागम आकाशवाणी वालों पिछले 9 दहाकों दौरान स्रोतियां नूं निरंतर दित्तियां गईयां बेमिसाल सेवावां नूं समर्पित होएगा। इस संबंधी जानकारी दिंदिया आकाशवाणी पंजाब दे कलस्टर हैड ते डिप्टी डायरैक्टर जनरल इंजीनियरिंग रणजीत मीना ने दस्सिया कि इस वाकाथॉन विच आकाशवाणी दे अधिकारी ते कर्मचारी कलाकार ते स्रोते भी आकाशवाणी दे 90 सालां दे शानदार सफर नूं यादगारी बनाउण लई इस विच शिरकत करनगे। आकाशवाणी नाल बीते 60 सालां तो वध समय तो जुड़े स्रोते गुरमीत सिंह खानपुर ने अपनियां भावनावां सांझियां करदिआं दस्सिया।
3: मैं हाँ तुहाडा गुरमीत खानपुरी जो कि हुशियारपुर जिले के पिंड खानपुर विच रहिंदा है ते रेडियो दा दीवाना है। मैं आकाशवाणी दे 90 साल दे सफ़र दी बहुत बहुत प्रशंसा करता हाँ अते मैं भी एक ऐसा यात्री हाँ जिहड़ा कि 60-65 साल तो इस नाल जुड़े हाँ, यानी कि 1959 तो मैं आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम निर्विघन सुनता आ रहा हाँ। मैं तुहानूं इह दसना चाहांगा कि रेडियो ने मैनू इन्ना कुछ सिखाया और इसने देश की तरक्की विच पंजाब की तरक्की विच बहुत ही बड़मुल्ला हिस्सा पाया है। बहुत बहुत बधाइयां इस 90 साल का सफर विच तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: IPL क्रिकेट विच अज दिल्ली दे अरुण जेतली स्टेडियम च दिल्ली कैपिटल्स दा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल होएगा। यह मैच शामी 7:30 बजे शुरू होएगा। अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। पछमी बंगाल च BJP विधायक दल का नेता चुनने लिए अज दोपहर बाद कोलकाता च मीटिंग होएगी। रक्षा खोज ते विकास संगठन ते भारतीय हवाई फौज ने ओडिशा के तट तो टैक्टिकल एडवांसड रेंज ऑगमेंटेशन तारा रक्षा प्रणाली की सफल परख की है। तो रेलवे ने रेल सुरक्षा से जोर देंदे उत्तरी रेलवे के मुख्य रूटा से कवच आटोमैटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के विस्तार को मंजूरी दी है। इस खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा। नमस्कार।

इंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम मिड डे मेलेडीज। दोस्तों, इस खूबसूरत दुनिया दे रंग ऐने ने कि लफ्ज़ मुक जाएंगे पर सिफत नहीं मुकदी। सो जान तो पहला बस इन्ना ही कहांगी कि ये दुनिया बहुत छोटी है, इसलिए नफरतां नूं पिछे छड़ के सिर्फ ते सिर्फ प्यार वंडिए। तो इसी तरह ही सुनते रहो FM रेनबो। तो दोस्तों, हुण जाण दा समा हो गया है, पर जांदे जांदे मिड डे मेलेडीज दे विच मैं एक गीत प्ले करांगी जो कि किशोर कुमार जी दिवास से विच है, आने वाला पल। तो इस दे नाल ही दिओ मैनू इजाजत। बाय बाय, गुड बाय, रब रखा।

और आम लिख दिए थे तेरे लिए, सब खास और आम लिख दिए थे, हर सुबह दोपहर और शाम लिख दिए थे तेरे लिए, सब खास और आम लिख दिए थे, हर सुबह दोपहर और शाम लिख दिए थे, इस 250 ग्राम के दिल में जितने आ सकते थे, इस 250 ग्राम के दिल में जितने आ सकते थे, प्यार के हर शब्द तेरे नाम लिख दिए थे तेरे लिए, सब खास और आम लिख दिए थे, हर सुबह दोपहर और शाम लिख दिए थे।

वेलकम बैक जी, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर दे ज़रिए दोस्त इस वेले प्रोग्राम सुन रहे ने जी, दिल आज शायर है। इस प्रोग्राम दे विच पहली हाजरी साढ़े कोल लगवा रहे ने जी साढ़े अजीज दोस्त राम स्वरूप अरोड़ा चौंक छेलियां सुल्तानपुर लोधी तो। हर बार की तरह सब तो पहला मैसेज आन पहुंचा जिन्हों का और तहजीब हाफी दी कलम दे विच लिखी हुई शायरी इन्होंने साडे नाल सांझी कीती है कि जब उसकी तस्वीर बनाया करता था, जब उसकी तस्वीर बनाया करता था, कमरा रंगों से भर जाया करता था, पेड़ मुझे हसरत से देखा करते थे, मैं जंगल में पानी लाया करता था, थक जाता था बादल साया करते करते, थक जाता था बादल साया करते करते, और फिर मैं बादल पे साया करता था, बैठा रहता था साहिल पे सारा दिन, बैठा रहता था साहिल पे सारा दिन, दरिया मुझसे जान छुड़ाया करता था, जब उसकी तस्वीर बनाया करता था, कमरा रंगों से भर जाया करता था, कमरा रंगों से भर जाया करता था।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक तू ही धनवान हो गोरी, बाकी सब कंगाल। सच्ची इदां लगदा जी, जदों कोई बहुत ही खूबसूरत शायरी साढ़े तक पहुँचती है तां लगदा कि इस शायरी दे अग्गे बाकी लिखी हुई हर एक शायरी फिक्की पै गई है। तो साढ़े दोस्त भी एक तो बाद एक खूबसूरत शायरी साढ़े तक पहुँचती कर रहे हैं। प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच जिसनों तुसी इंजॉय कर रहे हो जी, 102.7 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी जलंधर, 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर, न्यूज़ ऑन AIR दे जरिए। अगले साढ़े दोस्त जी सोनू मलेरकोटला तो लिख रहे हैं कि तुझसे बिछड़ कर जब मैं घर गया था, मैं एक मोड़ से पहले ही बिखर गया था, जो शख्स घर पहुंचा वो कोई और था, मैं तो रस्ते में ही मर गया था। मरन मरनाउन वाले कम छड़ दो सोनू जी, थोड़ी प्यार मुहब्बत वाली शायरी भेजा करो, ज़्यादा वधिया लगता है। खैर कोई गल नहीं जी, तुहाडे दिल दे हालात खिड़े मत्थे मंजूर ने जी, बहुत बहुत शुक्रिया शायरी भेजन दे लई। और अगले साडी शायरी पहुँच चुकी है जी, भेजन वाले दोस्त ने किरण रूला ग्रीन पार्क कपूरथला तो लिख रहे ने जी कि सजना दी याद भी क्या चीज़ बन गई, रातां दी खामोशी विच आवाज़ बन गई, दिल तो पहला ही तेरा हो बैठा सी, हुण ते हर साह भी तेरी मुहब्बत बन गई। बिल्कुल जी, जदों प्यार हो जाता है, मुहब्बत हो जाती है, तो फिर कोई भी आवाज़ लगावे ना, लगता है कि वही आवाज़ लगा रहा है, तो हर एक थान

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर ते 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर ते न्यूज़ ऑन AIR दे उपर तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम दिलाज शायर है। इस प्रोग्राम दे विच साडे दोस्त साडे तक शायरी पहुंचदी कर रहे ने जी। समा अपनी चाल चलदा जा रहा है ते समय नु मुख रखते हुए जिहड़ी शायरी हुण तक साडे कोल आण पहुंची है जी, उस सब शायरी नु असीं अपने इस प्रोग्राम च शामिल करदे हां जी। इस प्रोग्राम दे विच आखिरी शायरी दे रूप दे विच साडे दोस्त ने जगपाल सिंह पॉल लौंगोवाल संगरूर तो लिख रहे हैं कि ऐबां दा अंबार है बंदा, ऐबां दा अंबार है बंदा, दिल विच रखदा खार है बंदा, उपरों उपरों इको जापे विचों तिन ते चार है बंदा, जात धर्म दे महल उसारे करदा फिर दो फाड़ है बंदा, जिथे जांदा दूषित करदा कचरे दा भंडार है बंदा, कि दूजे तो जद मतलब निकले

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। हमारा आज का विषय है थैलेसीमिया, एक बीमारी जो विरासत में मिलती है, एक संघर्ष जो जन्म से शुरू हो जाता है और एक जिम्मेदारी जो जागरूकता से निभाई जा सकती है। जो लोग थैलेसीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित हैं वो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर विशेषज्ञ से अपनी परेशानियां पूछ सकते हैं। आज हम जानेंगे आखिर थैलेसीमिया होता क्या है, क्या इसका इलाज संभव है और कैसे जागरूकता बचा सकती है आने वाली पीढ़ियों को। आज हम इसी अहम विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। साथ ही डॉक्टर साहब एडल्ट थैलेसीमिया यूनिट भी चलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार शिल्पा जी, और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, मैं सबको अभिनंदन करता हूँ।
1: डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो हमारे फ़ोन इन प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे थैलेसीमिया पे अपने एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए विस्तार से कि थैलेसीमिया क्या है।
2: हाँ शिल्पा जी, ये बहुत ज़रूरी है। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है, इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, और ये इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग जागरूकता इसके बारे में फैलाएं, जो लोगों को नहीं है उनको इससे अवगत कराएं, और अगर जिन लोगों को है तो जैसा आपने सही कहा, उन लोगों को पता होना चाहिए कि इस बीमारी से कैसे हम लोगों को डील करना है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आज जो है, मैं आकाशवाणी को सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने आज के दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस पे ये कार्यक्रम रखा है और लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए एक कदम उठाया है। थैलेसीमिया जो है, जैसे हम लोग मामूली तौर पे जानते हैं अनीमिया जैसे होता है कि खून की कमी है, तो थैलेसीमिया में भी खून की कमी होती है, लेकिन ये दूसरी तरह की खून की कमी है। ये ऐसी कमी नहीं है जो कि किसी को खान पान में कमी है या आयरन कम है या किसी और कारण से, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं उस कारण से खून की कमी हो। ये जो है थैलेसीमिया एक अलग तरीके का अनीमिया है जिसमें कि खून की कमी होती है। आपके शरीर में जो रक्त कोशिकाएं बन रही होती हैं, जो RBCs बन रहे होते हैं, उसमें जो

0: हीमोग्लोबिन होता है जिसमें कि आयरन होता है और एक प्रोटीन होता है ग्लोबिन करके, वो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन रहा होता है वो ठीक से नहीं बनता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होने की वजह से या हीमोग्लोबिन में जो है गलत तरीके से माध्यम से बनने से जो RBCs होते हैं वो आम तौर पे 3 से 4 महीने रहते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन थैलेसीमिया के मरीजों में ये बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है 1-2 महीने में ही नष्ट हो जाए। ये डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया में आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ RBC बन रहे हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इनको हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं वो हीमोलिटिक अनीमिया की श्रेणी में करते हैं। तो जो ब्लड बन रहा है, जो RBCs बन रहे हैं, वो समय से पहले, अपने समय के अनुसार नहीं, समय से पहले नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों को हमें अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। साधारण भाषा में मैं यही कहना चाहूँगा।
1: तो ये होने थैलेसीमिया जो बीमारी है, इसका होने के पीछे कारण क्या है, किस वजह से ये हो जाती है?
0: देखिए, ये बीमारी जो है ये जैसा मैंने बताया ये किसी खान पान रहन सहन की वजह से नहीं है, ये एक जेनेटिक दिक्कत है जिसमें कि ये जीन्स के थ्रू आती है। तो ये ऊपर माँ या बाप दोनों में ही कोई दिक्कत होगी, और एक एक कण, जैसा कि हमें पता है कि बच्चा जो पैदा होता है शक्ल सूरत में माँ के ऊपर भी जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं कुछ बाप के ऊपर भी जाते हैं, तो दोनों के हिस्से से जो जीन्स आती हैं और जो कि RBC के कण बनाती हैं वो एक एक अंश दोनों के माध्यम से आता है। और जब दोनों में ही ये कैरियर स्टेट जिसे हम कहते हैं वो है, या फ्लोरेड बिल्कुल जो है प्रत्यक्ष रूप से अगर थैलेसीमिया है, तो बच्चे में थैलेसीमिया की संभावना हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि दोनों माँ या बाप या तो कैरियर हैं या दोनों में से एक को ग्रस्त है थैलेसीमिया से और दूसरा कैरियर है, तो बच्चे में ये दिक्कत थैलेसीमिया की होने की संभावना हो जाती है।
1: अगर किसी को थैलेसीमिया है तो क्या हम कैसे डायग्नोस करें, मतलब क्या कुछ लक्षण हैं कि कैसे पता लगे हाँ इसको ये बीमारी है?
0: देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि थैलेसीमिया में RBC जो लाल कोशिकाएं हैं या जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, और इनका कारण बाहर की कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, ये जीन्स जो हैं डिफेक्टिव उन्हीं वजह से है। तो ये जेनेटिक डिजीज़ के होने की वजह से जो थैलेसीमिया में RBCs बन रहे हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप जो है अपने लिए इसमें ध्यान रखें कि इनको क्या दिक्कत है थैलेसीमिया की या नहीं। तो अगर ये ऊपर से आएगा तो बच्चे में प्रभाव आता है, और क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है ये नहीं है कि आज बच्चा पैदा हो जाएगा तो आज ही दिक्कत महसूस होगी, ये 6-8-9 महीने बाद बच्चे में होती है। तो बच्चा रोता रहता है, कमज़ोर हो जाता है, दूध नहीं पी पाता है माँ का, या फिर जो है बढ़ना बंद हो जाता है, सांस फूलने लगती है उसमें दूध पीने में, तो ये सब दिक्कतें हैं जो बच्चे में हो जाएंगी। बढ़ेगा नहीं अपनी रफ्तार से क्योंकि खून उसका कम है, क्योंकि माँ बाप ये नहीं हो सकता है क्योंकि दौड़ भाग नहीं रहा है तो सांस नहीं फूलेगा, 6-8 महीने का बच्चा जो है तो दूध पीने में उसे थकान हो जाएगी, बढ़ना कम हो जाएगा उसका, तो ये बहुत ज़रूरी है। और कई बच्चे जब तक आप इसको संभावना नहीं रखेंगे कि थैलेसीमिया हो सकता है तब तक आपको ये पता नहीं चलता है, इसलिए डॉक्टर को दिखा करके इसकी जांच कराना ज़रूरी है।
1: आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पर, बातें हम और भी करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। तो डॉक्टर साहब, तो हमें ये बताइए कि थैलेसीमिया जो है तो वो बच्चों में ही होता है या बड़ों में भी होता है?
1: देखिए, बिल्कुल ठीक आपने पूछा। थैलेसीमिया जो है ये जन्मजात बीमारी है, तो ये बचपन से ही होती है क्योंकि जीन्स जो हैं ये तो इनहेरिट हो जाते हैं बचपन, जब बच्चा बन जाता है तभी से। लेकिन ये किस लेवल पे, किस उम्र पे ये मैनिफेस्ट करेगा, प्रत्यक्ष होगा, इसकी बीमारी के लक्षण आएंगे, ये जो है ये बहुत फ़र्क पड़ता है। जो थैलेसीमिया मेजर है जैसा मैंने बताया, तो उसमें तो 6-8-9 महीने में ही बच्चा जो है उसमें लक्षण आने लगते हैं, सांस फूलना, दूध नहीं पी पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी। लेकिन जो माइनर है उसमें डिपेंड करता है कितना जीन्स का जो है इनहेरिटेंस है। ऐसे भी अलग अलग जीन्स, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया भी अलग होते हैं, जो कि फ़र्क पड़ता है। तो ये वयस्कों में भी मैनिफेस्ट कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से आ सकता है। तो जो अगर एडोलिसेंट हैं या बड़े लोग हैं उनमें अगर थैलेसीमिया पता चलता है तो उनमें हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है, तो वो अपना दौड़ भाग का जो काम है या ज़रूरत से ज़्यादा, रोज़मर्रा की दिनचर्या से ज़्यादा जो काम करते हैं उसमें उन्हें करने में दिक्कत होती है।
0: डॉक्टर साहब, एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली। आज इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है कि थैलेसीमिया का मुख्य कारण क्या है होने का, और ये जेनेटिक है तो इसे जन्म के समय बच्चे को इस बीमारी से कैसे बचाएं?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जीन्स जो माँ बाप में हैं उनसे इनहेरिट होता है। तो हाँ, एक चीज़ है, आगे चल करके अगर आपको पता है कि जीन्स हैं और हम लोग जीन्स एडिट कर पाएंगे तो शायद इसका इलाज तब संभव होगा वयस्कों में भी। लेकिन जब तक नहीं ये संभव है तब तक ये माँ बाप से बच्चे में आएगा। तो इसको बच्चे का आप जांच करा सकते हैं, अपनी खुद की जांच करा सकते हैं। जैसे शादी से पहले लोग जन्मपत्री मिलाते थे पहले, तो आजकल ये कई जांचें हैं जो करा लेनी चाहिए, उसमें से थैलेसीमिया की भी एक जांच है जो कि करा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप माइनर हैं, थैलेसीमिया ट्रेट है आप में या थैलेसीमिया माइनर है, तो आपको दूसरे थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर जो आगे आने वाली नस्ल है उसमें थैलेसीमिया के होने की संभावना होती है। मान लीजिए आपने दोनों ही थैलेसीमिया माइनर हैं, हस्बैंड वाइफ, तो फिर आपको जो बच्चा जब गर्भ ठहरता है तो आप उसकी भी जांच करा सकते हैं, जो कि एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग टेस्ट होता है, तो आप उसकी भी जांच करा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि बच्चे में थैलेसीमिया होने की संभावना क्या है उसमें। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपको पता चल सकती हैं और आप उस हिसाब

0: से अपना आगे का जो है मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। और अगर बच्चे को थैलेसीमिया है तो ऐसा नहीं है कि उसका इलाज संभव नहीं है, वो भी संभव है। तो जो इनका सवाल है, मेरे ख्याल से इम्तियाज जी का हमने जवाब दे दिया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर
1: भी हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: उत्तराखंड से बोल रहे हैं, रघुवीर जी बोल रहे हैं मैडम
1: जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना है डॉक्टर साहब।
0: हाँ नमस्कार रघुवीर सिंह जी, बताइए।
2: तो जैसे मतलब कोई आदमी है, जैसे वो अपने को कमजोर महसूस कर रहा है, तो खून की कमी है, जैसे उन्होंने चेकअप किया है हॉस्पिटल में, तो खून की बढ़ावा देने के लिए कौन से स्रोत से हम बढ़ा सकते हैं खून को? अगर वो नहीं है तो अंग्रेज दवाई कोई बताइए सर, बस यही पूछना है।
0: देखिए, जो आप कह रहे हैं कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं, उसमें से अनीमिया एक है। तो वो आपने बताया कि जांच में अनीमिया आया है, तो अगर अनीमिया आया है तो अनीमिया के भी कई कारण होते हैं। जैसे एक थैलेसीमिया है, तो उसमें तो मैं आपको नहीं दूंगा कि आप आयरन लीजिए या अलग चीज़ें लीजिए, लेकिन अगर खुराक में कमी की वजह से या किसी को पाइल्स होती हैं या किसी को पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, अगर उनको दिक्कत है तो वो अपना न्यूट्रिशन जो है खुराक में आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आयरन के मात्रा बढ़ाने के लिए आप चीकू, अनार, सेब, केला, ये सब फल ले सकते हैं, गुड़, चना। डिपेंड करता है कि अगर आपको और कोई बीमारी नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं और अपनी खुराक बढ़ा सकते हैं। इससे आपको, अगर आप खुराक पूरी ले रहे हैं और उसमें आयरन के सेवन ठीक से कर रहे हैं, चीकू जैसे मैंने बताया या आयरन, ये सेब, अनार, ये सब चीज़ें लीजिए, तो खून में मात्रा बढ़ जाएगी आयरन की, तो एनीमिया ठीक हो जाएगा। नहीं तो फिर दवा का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर साहब से आपने परामर्श किया है उनसे एक बार बात कर लीजिएगा इस सिलसिले में।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले आपने कहा था कि शादी के समय थैलेसीमिया की जांच करा लेनी चाहिए, अगर बाय चांस किसी ने जांच नहीं कराई, हस्बैंड वाइफ दोनों को थैलेसीमिया है, तो आगे बच्चे में होने के कितने चांसेस हैं, या उसको बच्चे को आगे ना हो तो क्या उसके लिए भी कुछ इलाज है?
0: हाँ देखिए, ऐसा है कि अगर दोनों माँ बाप जो है दोनों में थैलेसीमिया की जीन है, मतलब अगर वो कैरियर हैं, तो बच्चे में होने की संभावना रहती है जो 25-50% हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप थैलेसीमिया मेजर हैं या थैलेसीमिया माइनर हैं। अगर ये आपको इनहेरिट हो गई है, मतलब जन्म से बच्चे में आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि सारी उम्मीद नहीं है, बच्चे को हमेशा रहना पड़ेगा। जो इसका इलाज है, अगर आपको पता चल गया है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर है, तो फिर एक आज की तारीख में, पिछले कुछ सालों में हमारे पास ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। थोड़ा महंगा ज़रूर है इलाज, लेकिन ये है कि अगर आप इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, कोई और सिबलिंग है, भाई बंधु है जिसका जो है बोन मैरो मैच कर सकता है, या कोई और जो मैच कर सकते हैं, तो अगर उनका एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर लाइफ लॉन्ग आपको कुछ भी नहीं करना है, ये थैलेसीमिया आपको क्योर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए, जैसा आपने कहा शिल्पा जी, कि अगर नहीं है, बोन मैरो मैच करता है और इनहेरिट हो गया है और थैलेसीमिया अब बच्चे को है, तो फिर इनका, क्योंकि खून जल्द समय से जल्दी नष्ट हो रहा है, तो हमें इनको खून चढ़ाना पड़ता है, तो ये एक दिक्कत रहती है। और फिर समय समय पे इन्हें खून ज़िंदगी भर चढ़ाना पड़ता है, जो कि अपने में दिक्कत का विषय है, क्योंकि खून जो है आदमी का ही चढ़ता है, और वो आपको फिर ब्लड बैंक से या कहीं से इंतज़ाम करना पड़ता है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है।
1: तो जैसे कि आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों को हो तो जेनेटिक है, तो बच्चे में भी होगा ही, तो ऐसे में बच्चों को होने में प्रेगनेंसी के समय क्या दिक्कत आती है, या बाद में बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं?
0: देखिए, जब तक बच्चा गर्भ में होता है तब तक तो ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये है कि हाँ, अगर बच्चा जब पैदा हो जाता है, उसके बाद उसका जब शुरू में तो जो है एक ना हीमोग्लोबिन एफ होता है, तो वो जो है उसमें दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए बच्चे को ना शुरू के 4-6 महीने में कोई परेशानी नहीं महसूस होती है, लेकिन उसके बाद जो है बच्चे का हीमोग्लोबिन जो है वो ए में चेंज हो जाता है और अपना खुद का हीमोग्लोबिन बनने लगता है। तो वो जैसा मैंने बताया, जब अपना हीमोग्लोबिन बताया, वो 3-4 महीने रहता है, तो जब बच्चों में भी फिर ये जब बन जाने लगता है अपना, तो फिर मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाते हैं, बच्चों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये 6-9 महीने पे आम तौर पे अगर अपना बिल्कुल भी थैलेसीमिया में के मरीजों में, बच्चों में नहीं बन रहा है जो थैलेसीमिया मेजर होता है, तो ये 6-9 महीने में आपको यूजुअली पता चल जाता है। लेकिन इनमें कुछ कुछ ग्रेड

0: होते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि कुछ सीवियरिटी कम हो सकती है, तो कई बार ये साल डेढ़ साल की उम्र पे भी पता चल सकता है, क्योंकि कुछ प्रतिशत बन रहा हो सकता है। तो अगर आपको खून में जांच करानी होती है तो फिर आप खून में HPLC की जांच हम लोग कराते हैं। हालांकि साधारण CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट होती है या हीमोग्राम होता है, जो कि कॉमनली अनीमिया के लिए कराया जाता है या रूटीन हेल्थ चेकअप्स में कराया जाता है, उसमें भी इसके बारे में हमें मतलब ज्ञान काफ़ी हद तक हो जाता है। लेकिन कन्फर्मेशन के लिए हम लोग HPLC टेस्ट कराते हैं, तो वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो टेस्ट करा करके फिर हम इसको कन्फर्म कर लेते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन, शरीर में आयरन बढ़ने की समस्या और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इन सभी समस्याओं के साथ, इन सभी चीज़ों के साथ थैलेसीमिया का इलाज कितना सफल है?
0: देखिए, आज की तारीख में थैलेसीमिया का इलाज काफ़ी सफल है। पिछले मैं कहूँगा 20-25-30 साल में काफ़ी उपलब्धियाँ रही हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं इस सिलसिले में, और स्पेसिफिकली थैलेसीमिया के रोगियों के लिए काम कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी एक अच्छी चीज़ है कि ये लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे ही रेड क्रॉस जो है वो भी, जैसे हमारे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में रेड क्रॉस के और अपने ब्लड डोनेशन से सब मरीज़ों को जो है ब्लड की दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, और ये मतलब थैलेसीमिक्स इंडिया है, नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी है, ये जो बच्चे थैलेसीमिया से ग्रस्त होते हैं इनको काफ़ी जो है मदद करते रहते हैं। और हमारी सरकार ने भी जो है अपने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, और भारत सरकार के हिसाब से इनके ऊपर कोई भी खर्च नहीं आना चाहिए, और सारी की सारी सुविधाएं हमारी सरकारी अस्पताल की तरफ से मरीजों को मिलती है।
1: तो ऐसी कौन सी सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं जिससे लोगों को इसका इलाज आराम से करा सकें वो?
0: देखिए, हमारे पास जितने भी बच्चे रजिस्टर हो जाते हैं तो उनको जो ब्लड की सुविधा है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि जब मैं आपको बताता हूँ 2007 में, करीब 20 साल पहले हमने अपने लेडी हार्डिंग में वयस्कों का, एडल्ट्स का शुरू किया था, तो करीब 8 मरीजों से शुरू किया था। आज की तारीख में 250 से ज़्यादा मरीज़ जो है वयस्क मरीज़, बच्चे तो हैं ही इतने, 300 350 करीब बच्चे भी होंगे, लेकिन आज की तारीख में करीब 250 से ज़्यादा मरीज़ जो है ये लेडी हार्डिंग में इनका इलाज चल रहा है, और इनका कोई खर्चा नहीं आता है। ये मतलब उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी, कई एरियाज से, दूर दराज के एरियाज से हमारे पास आते हैं, और इनको पूरा इलाज दिया जाता है। इस इलाज में जो खून की सुविधा है वो तो डोनेशन से हमारे पास रहती है, क्योंकि देखिए किसी को भी जिसको हर 15 दिन पे 2 यूनिट खून चढ़ना है, वो उसके रिश्तेदार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि घर में कितने रिश्तेदार होंगे जो साल में मतलब 50 यूनिट डोनेट कर देंगे। तो इसलिए सरकार की तरफ से व्यवस्था, और जैसे मैंने कहा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, रेड क्रॉस वगैरह की तरफ से सुविधा काफ़ी रहती है, और ये पीरियोडिकली ब्लड डोनेशन कैंप्स में भी जो खून आता है तो ये मरीजों के काम आता है, और इनको ब्लड की दिक्कत नहीं होती है। और पहले एक आधी बार हुआ है कि ऐसी परेशानियां हुई हैं इन्हें कि ब्लड शॉर्टेज है, कोविड के दौरान दिक्कत थी, तो कोविड में भी सरकार ने बहुत ज़्यादा उपलब्ध कराया इन लोगों के लिए कि आए तो दिक्कत ना हो, तो अलग अलग सुविधा थी। हमारे लेडी हार्डिंग में हम लोगों ने कभी बंद नहीं किया इनका, कोविड में हम लोगों ने अलग से ख्याल रख करके इन लोगों को खून चढ़वाया। खून चढ़वाने के बाद जो है इनको हमें बाकी खून चढ़वाने के लिए भर्ती की सुविधा, उनको जो किट्स चाहिए होते हैं उसकी, खून चढ़ाने के लिए जो किट इस्तेमाल होते हैं उनकी, ट्रांसफ्यूजन सेट्स की सुविधा और बाकी दवाओं की सुविधा, ये सारी सुविधाएं और जितनी जांचें होती हैं, क्योंकि हर बार जब खून चढ़वाने आते हैं 15 दिन पे या 10वें दिन पे, तो उनकी जितनी भी जांचें हैं वो सारी की सारी सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से मुफ्त ही होती हैं।
1: तो जैसे ये थैलेसीमिया बचपन से, मतलब बचपन से जब पैदा होते हैं, जेनेटिक ही होता है, बड़े होने पर भी हो सकता है या फिर छूने से भी हो सकता है?
0: देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका, छूने से नहीं हो सकता है, ये बचपन से ही होता है, लेकिन ये किस समय मैनिफेस्ट करेगा या प्रत्यक्ष रूप से आएगा ये अलग अलग अवस्था में पता चलता है। तो जैसे कि अगर मेजर है तो हो सकता है कि बचपन में बिल्कुल जो है 1 साल 6 महीने 1.5 साल पे पता चल जाए, और जो बड़े लोगों में है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पता चले जब तक आप खून की जांच ना कराएं, क्योंकि हीमोग्लोबिन हो सकता है 8 ग्राम 9 ग्राम 10 ग्राम पे आप अपना सुचारू रूप से जीवन चलते रहें, हालांकि हीमोग्लोबिन कम रहता है इनका वो, लेकिन ज़िंदगी हो सकता है पूरी निकल जाए, ज़िंदगी पर्यंत तक आपको पता ना चले कि इन्हें कोई दिक्कत है। तो 50 साल 60 साल पर कभी जांच कराइए आपने, तब आपको हो सकता है पता चले, और अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो भी हो सकता है।

0: आपका जीवन नॉर्मल चलता रहे। लेकिन यह है कि हाँ, जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं उनको भी कुछ दिक्कतें होने की संभावना रहती है।
1: तो मेजर और माइनर में क्या अंतर रहता है? जिसे मेजर है उसमें क्या रहेगा और जो इसको माइनर है थैलेसीमिया उसमें क्या रहेगा?
0: देखिए, ये तकनीकी सवाल है, लेकिन इसका मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये कहूँगा कि जो थैलेसीमिया मेजर है, आप ये समझ लीजिए वो मेजर प्रॉब्लम है, और जो थैलेसीमिया माइनर है वो माइनर प्रॉब्लम है। तो माइनर को इतनी दिक्कत नहीं होती, उनको 30, 40, 50 साल की उम्र तक कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। उसके बाद कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, सांस फूलना, या उनके फेफड़ों में, क्योंकि इतने लंबे टाइम से ऑक्सीजन थोड़ा कम चल रहा होता है, तो फेफड़ों में थोड़ी सी जो ब्लड प्रेशर जैसे है वो बढ़ने की, या कुछ थ्रोम्बोसिस के एपिसोड्स हो सकते हैं। हालांकि बहुत कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ दिक्कत हो सकती है उन्हें।
1: तो जैसे जिन बच्चों को जैसे जेनेटिक है तो बच्चों में होता है, तो क्या वो अपना नॉर्मल डे टू डे रूटीन फॉलो कर सकते हैं? मतलब खेल कूद हो गए, पढ़ाई हो गई, इसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ, या उस पर भी इफ़ेक्ट आता है?
0: देखिए, अगर इनका हर मरीज़ का, हर बच्चे का जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है, उसका अपना एक कितने दिन में RBCs जो हैं, रेड सेल्स जो हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, वो एक बन जाता है 10 दिन पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे। तो उस पर अगर बच्चा खून नहीं चढ़वाएगा, तो हम लोग कोशिश करते हैं इनका खून जो है 11 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर रहे। आमतौर पर ये 14 से 18 ग्राम होता है, तो इनका थोड़ा सा हम कम पे ही रखते हैं कि 11 से 12 के बीच में रहे, और ये करीब 8 से नीचे ना जाए किसी भी हालत में। तो आप समझ लीजिए कि कुछ तो गतिविधियाँ इनकी नॉर्मल नहीं रहती हैं, क्योंकि 8 ग्राम खून 11 से 8 पे आता है, फिर हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, फिर 11 पे ले जाते हैं, 8:30 पे आ गया, फिर ले जाते हैं वापस 11 पे ट्रांसफ्यूज़ करके। तो ये चीज़ तो दिक्कत थोड़ी रहती है, लेकिन क्योंकि इनको ये क्रॉनिक बहुत लंबे समय से रहती है दिक्कत, तो ये इनका शरीर अडेप्ट कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी सुचारू रूप से अपनी नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, अगर इनको ब्लड जो है हर 10वें 15वें 20वें दिन जो भी उस मरीज़ का है नियमित रूप से अगर मिलता रहता है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, अपना सारा काम कर सकते हैं। हमारे पास जो आज की तारीख में है, तो ये बच्चे हालांकि अब तो बड़े हो गए, और ये 45 साल तक की उम्र के लोग जो हैं अभी बिल्कुल सुचारू रूप से अपना कार्यकाल, अपने सारे काम वाम कर रहे हैं, बाहर भी जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, अपने पेपर भी प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, अपने जॉब कर रहे हैं, आते हैं, अपना करते हैं, और खून चढ़वा के अपनी ज़िंदगी पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दिक्कत तो रहती है, क्योंकि 15 दिन पे आना पड़ता है खून चढ़वाने के लिए, कोई साथ में आता है क्योंकि एडमिशन बनता है, और खून चढ़वाने के भी अपने रिस्क रहते हैं, और दिक्कत होने की संभावना रहती है कुछ ना कुछ।
1: जी, आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। श्रोताओं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इससे जुड़ा कोई भी सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2342108023421082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में आप अपने विचार हमें भेज सकते हैं 1 से 2 मिनट के ऑडियो एवं वीडियो फॉर्मेट में हमारे मेल आईडी पे health@delhi.gmail.com पे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात करें थैलेसीमिया पे, तो एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, रेडियो डॉक्टर शो, मेन कॉज ऑफ थैलेसीमिया, विच एज इज थैलेसीमिया।

0: एंड वाई कांट द थैलेसीमिया टेक आयरन, रेनबो लवर्स बॉय नेम हितेंद्र दास फ्रॉम असम।
1: हाँ हितेंद्र दास जी, बहुत ठीक कहा आपने। तो जैसा मैंने बताया है कि थैलेसीमिया अगर मेजर है या ज़्यादा सीवियरिटी का है तो जल्दी महसूस हो जाता है, तो आपको नवजात शिशु में 6 से 9 महीने पे उम्र पे पता चल जाता है। बाकी जैसा है, आयरन इन लोगों में इसलिए नहीं देते क्योंकि मैंने आपको जैसे कहना कहा था शुरू में, ये एक हीमोलिटिक अनीमिया है। तो इसमें क्या होता है कि RBC बन रहे हैं उसमें आयरन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो ये ग्लोबिन चेन्स हैं वो ख़राब होती हैं इसमें, और वो जीन्स के जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती हैं, तो वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। तो आयरन की कमी की वजह से इसमें अनीमिया नहीं होता है। जो हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है उसमें, इसमें हीम आयरन वाली प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसकी वाली प्रॉब्लम है। तो वो चेन्स जो हैं वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है, RBC जो हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इन पेशेंट्स में आयरन की कमी नहीं होती। दूसरा, इन पेशेंट्स में हम हर 15 दिन पे या हर 10 दिन पे या हर 3 हफ्ते पे अगर हम खून चढ़ा रहे हैं, तो ये जो खून चढ़ता है ये तो नॉर्मल आदमी का खून चढ़ता है, तो ये आयरन रिप्लीट होता है, इसमें आयरन अच्छे खासा मात्रा में होता है। तो इनका अपने शरीर का आयरन जो कि पुराने RBCs डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसकी वजह से होते हैं, और जो बाकी हम खून देते हैं उसका आयरन इनमें होता है। तो इसलिए ये इनमें आयरन हम लोग अवॉइड करते हैं, बल्कि जो आयरन रिच फूड्स होते हैं हम इन्हें हिदायत देते हैं कि ये ना लें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि थैलेसीमिया के मरीज़ों को आयरन यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इनमें नहीं होता है यूजुअली आमतौर पर।
0: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है केशव बिष्ट का, ये लिखते हैं सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है और इसका सक्सेस रेट क्या है थैलेसीमिया में।
1: देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा केशव जी, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब कि आपको किसी और मनुष्य का बोन मैरो, मतलब जो गूदा है अपनी हड्डी के अंदर जो होता है, मैरो जिसे कहते हैं, वो आपको निकाल करके इन पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी विधि है। एक तो आपको पहले मैच करना पड़ता है, ये कई लेवल की मैचिंग होती है, जैसे ब्लड ग्रुपिंग की मैचिंग होती है, HLA की मैचिंग होती है, ये सब जो है प्रक्रिया अलग होती है। इसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, जो डोनेट करता है उसके टेस्ट होते हैं, जिसमें रिसिपियंट जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है उसके अलग टेस्ट होते हैं, और उसके बाद मैचिंग होती है कि ये मैच करेगा या नहीं करेगा। अगर मैचिंग की संभावना रहती है तो फिर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और उसके बाद ये बोन मैरो जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट मतलब जब हो जाता है, तो शरीर उसे रिजेक्ट ना करे, जैसा आपने पूछा है। तो थैलेसीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सफलता काफ़ी ज़्यादा रहती है। हालांकि किसी भी ट्रांसप्लांट में आप उस आदमी के लिए पूछें तो वो 0% या 100% दोनों ही हो सकती है, क्योंकि जो हम आंकड़े बताते हैं 40% सक्सेस रेट है या 50% सक्सेस रेट है, वो तो 100 लोगों में 50 लोगों में हम मान करके चल रहे हैं या 40 लोगों में मान के चल रहे हैं अगर हम 40% कह रहे हैं। लेकिन उस मनुष्य के लिए तो उसमें वो अगर सक्सेस हो गया तो सक्सेस है, नहीं सक्सेस है तो नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी क्योंकि इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रांसफ्यूजन अवॉइड हो जाता है, तो थैलेसीमिया में कोशिश करना चाहिए और जल्द से जल्द कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ट्रांसफ्यूजन कर चुके हैं उसके बाद अब अगर आप कोशिश करेंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल होने में दिक्कत होती है।
0: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है जोगिंदर सिंह का, ये लिखते हैं डॉक्टर साहब को नमस्कार, मैं जोगिंदर दैया सोनीपत से बोल रहा हूँ, मेरी बेटी को इंटरमीडिएट थैलेसीमिया है, उसकी उम्र 10 वर्ष है। मेरी बेटी का इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है और गुड़िया का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम के पास रहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गुड़िया का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जाए या नहीं कराया जाए, तो इसका अधिकतम खर्च आपके अस्पताल में कितना होगा।
1: देखिए अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया हम अपने अस्पताल में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सालों में शुरू हो जाए, अभी तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन हाँ, इसका आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का अलग अलग अस्पताल में अलग अलग खर्चा आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 8 ग्राम खून है तो क्या इन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं, क्योंकि अगर थैलेसीमिया माइनर है, कई बार इनको ब्लड तो कम होता है जैसा मैंने बताया, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है कि अभी तक नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा, निगरानी में रखना पड़ेगा, और क्या दिक्कतें हैं वो आपको मरीज़ को देखनी पड़ेंगी कि क्या परेशानियाँ हो रही हैं। तो एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें, और आज आपको अवगत हुआ है कि हाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल इलाज

0: है, तो अपने डॉक्टर साहब से इससे ज़रूर पूछें और अब वो आपको ज़रूर राय देंगे। अगर अभी तक उन्होंने नहीं बताया है तो लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा। खर्चा तो एक चीज़ है ही, लेकिन एक सक्सेसफुल डोनर भी होना चाहिए। अगर बच्चा आपका एक कोई और बच्चा है जो कि थैलेसीमिया से ग्रस्त नहीं है, तो उसका जो बोन मैरो है वो ट्रांसप्लांट करना सबसे उचित रहता है। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, और सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पहले ज़रूरत है नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो जिन लोगों को बहुत सीवियर माइनर में हम लोग यूजुअली एडवाइज़ नहीं करते हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और दिक्कत है उससे पहले, तो मैं एडवाइज़ करूँगा कि आपको एक बार इसको सोच लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब से ज़रूर परामर्श करें और वो आपको इसमें गाइड कर देंगे।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कहा, तो ये कितनी बार कराना पड़ता है, कितने समय के इंटरवल्स पे कराना पड़ता है?
0: देखिए, अब बचपन में आपको हो सकता है कि 3-3 हफ्ते पे कराना पड़े, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके शरीर में, क्योंकि हर 3 हफ्ते पे खून चढ़ रहा है या हर 2 हफ्ते पे खून चढ़ रहा है, तो कई बार स्प्लीन जैसे है या लिवर है, ये ऑर्गन्स बढ़ जाते हैं और ये आपके जो ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसीज हैं जो आपको मिल रहे होते हैं, जो मरीज़ को मिल रहे होते हैं अच्छे, मतलब नॉर्मल आदमी के ब्लड, वो आरबीसीज वो भी डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। तब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 हफ्ते से हो सकता है 10 दिन हो जाए, हो सकता है हर हफ्ते करना पड़ जाए, तो ये बहुत सारी अलग समस्याएँ होने की चांसेस रहते हैं, संभावना रहती है, और इसलिए हमें मरीज़ों को देखना पड़ता है कि क्या दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं या क्या परेशानी हो रही हैं। तो इन सब परेशानियों पे निगरानी रखना, वो भी एक, जैसे आपने पूछा कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वो सब सुविधा भी हमें बीच बीच में देखनी पड़ती है। वो बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसमें आप कहेंगी तो उनके बारे में भी बात कर लेंगे।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, माई HPLC रिपोर्ट शोज RBC काउंट 3.8 HB इज 8.4, इट इज थैलेसीमिया और नॉट, विद रिगार्ड्स चित्रा सेठी अजमेर।
0: ये रिपोर्ट ठीक नहीं है या कुछ आपने पार्टली बोली है, ये जिन डॉक्टर साहब से आपने कराई है एक बार देखना पड़ेगा। उसमें HPLC रिपोर्ट में आपका हीमोग्लोबिन A2F ये सब चीज़ें का प्रोपोर्शन आता है, और जो थैलेसीमिया के लोग हैं उनमें हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो 95% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये परसेंटेज जो है अलग अलग रहती है, तो इसको मैं आपको वैसे भी तकनीकी जो है टेक्निकल बिल्कुल एडवाइस नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि उससे ना पैनिक बढ़ जाता है और हर कोई अपना HPLC कराना देखना शुरू कर जाएगा। तो ये शायद आपकी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट और RBC की रिपोर्ट और HPLC की रिपोर्ट कुछ मिक्स हो गई है जो आपने भेजी है, लेकिन जिन डॉक्टर साहब ने कराई है उनसे ज़रूर एक बार आए लें। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और उसमें HPLC में, मुझे लगता नहीं कि आपको थैलेसीमिया होगा अगर आप मैसेज कर रहे हैं ऐसे।
1: तो इसी से रिलेटेड एक और मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं, कितने हीमोग्लोबिन के नीचे PRBC का ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए और कितने हीमोग्लोबिन काउंट के ऊपर हमें पेशेंट्स को रखना चाहिए, आयरन ओवरलोड क्यों हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट। क्वेश्चन बाय अनिल शर्मा फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
0: मैं मानता हूँ कि ये सारे सवाल जो है ये थैलेसीमिया रोगियों के लिए हैं। तो जैसा मैंने बताया, अगर थैलेसीमिया रोगियों में, देखिए, हीमोग्लोबिन अगर आपको थैलेसीमिया नहीं है और 8 ग्राम है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको खून चढ़ाया जाए। तो लेकिन अगर थैलेसीमिया है और अगर आपका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है और वो कम हो रहा है हर बार, जैसा मैंने बताया कि हम कोशिश करते हैं 11 से 12 के बीच में रहे या 10 से 11 के बीच में रहे, अगर वो कम होकर के 8, 8.5 के आसपास आ रहा है तो ज़रूर खून चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका, जैसे अभी बात हुई थी, किसी का थैलेसीमिया ट्रेट है और 9 ग्राम ही हीमोग्लोबिन रह रहा है, अब वो 9 से 8.5 हो गया है, तो ये लेबोरेटरी वेरिएशन हो सकती है, कुछ और कारण हो सकते हैं जिसको हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। इस पे खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं जो है रेडियो के, आकाशवाणी के माध्यम से मैं ये राय नहीं दे सकता हूँ बिल्कुल कि अगर आपका 8 है तो आज खून चढ़वाना ही है या आपका 10 है तो आज खून नहीं चढ़वाना है। देखिए, मैं बहुत साफ बात बताऊं, अगर आपका 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है और आज 10 हो गया है तो हो सकता है आपको खून चढ़वाने की ज़रूरत पड़े। लेकिन मान लीजिए आपका कल तक 11 ही ग्राम खून था और आज वो 10 या 10.5 आ रहा है तो आपको खून चढ़वाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कई चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपको खून चढ़वाना है या नहीं। थैलेसीमिया में मैंने बस ऐसे बताया, जो लोग थैलेसीमिया मेजर हैं जिनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उनका हम कोशिश करते हैं कि 2.5 ग्राम या 3 ग्राम तक अगर कम हो जाता है तो हमें उन्हें खून चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि उनको बाकी उनकी ग्रोथ पे या उनके काम करने में दिक्कत नहीं हो।
1: थैलेसीमिया पहचानने के लिए क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि इस बीमारी की पहचान के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? क्या आम ब्लड टेस्ट से इसकी पहचान की जा सकती है या कुछ डिफरेंट टेस्ट हैं इसके लिए?
1: देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिल्पा जी आप। इसमें आम ब्लड टेस्ट से हम इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कायदे से हमें इसका जो है HPLC यूजुअली हम लोग कराते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि इसमें कितना हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल बन रहा है नहीं बन रहा है। तो HPLC या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रिप्टोग्राफी जो टेक्निक है, उसी से ही इसको जो है, या HB इलेक्ट्रोफोरेसिस लोग कराते हैं, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है कि कितना जो है हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, कितना जो है एबनॉर्मल है।
0: और इसका इलाज कितने प्रतिशत मतलब सफल है, मतलब कितने प्रतिशत

0: बिल्कुल ठीक हो जाता है जो इलाज ले रहे हो?
1: देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में हमारे पास कई इलाज हैं संभव, जिसकी वजह से जैसे खून चढ़ना है वो तो एक चीज़ है ही, लेकिन खून चढ़ने से आयरन की मात्रा भी बढ़ जाती है जैसे कि बात हुई थी, तो उसको भी हमारे पास पहले एक ही दवा आती थी, आज की तारीख में हमारे पास 3 दवाएं हैं और वो मुंह से ली जा सकती हैं, पहले तो हमें उसे इंजेक्शन से ही देने पड़ते थे। तो काफ़ी ज़्यादा तकनीकी हमारे पास एडवांसमेंट हो गए हैं और इसमें रोगी जो हैं उनको, थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनको नियर नॉर्मल जो लाइफ है वो अपनी ये सुचारू रूप से कर सकते हैं, व्याप्त कर सकते हैं। और इसमें जो है सरकार ने जो है डिसेबिलिटी में भी थैलेसीमिया को इंक्लूड कर लिया है, उससे भी इन लोगों को काफ़ी जो है आराम मिला है और ये लोग अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके लिए मेहनत की है और आज की तारीख में थैलेसीमिया एक डिसेबिलिटी, सर्टिफाइड डिसेबिलिटी है, तो और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं थैलेसीमिया सर्टिफिकेशन होता भी है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इन मरीज़ों को मतलब नॉर्मल लाइफ अपना खुद जो है स्वावलंबी बन करके अपना खुद मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और अपना सारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है थैलेसीमिया के पेशेंट्स को आज की तारीख में।
0: तो इसका जो इलाज है वो महंगा है या इजी टू अफोर्ड है? मतलब
1: देखिए अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो इजी टू अफोर्ड तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि दवाइयाँ बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं और दवाइयाँ लेनी भी ज़्यादा मात्रा में पड़ती हैं और रेगुलरली लेनी पड़ती हैं, साल दर साल लेनी होती हैं। सिर्फ ब्लड चढ़वाना और ब्लड को चिलेट करना, जो आयरन है उसको चिलेट करना या उसको कम करने की दवाएँ, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी क्योंकि आयरन काफ़ी जाता है उससे आयरन शरीर के कई अंगों में जमा हो जाता है, तो उस अंगों में दिक्कतें जो होती हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बोन की दिक्कत होती है और हार्ट की भी प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती हैं, थायराइड की, डायबिटीज़, ये सब दिक्कतें जो हैं इनका भी इलाज हमें करना पड़ जाता है। तो अगर आप मानेंगे तो कोई भी एक बीमारी का इलाज जो है महंगा तो हो ही जाता है, तो अगर आपके पास कई बीमारियां हो जाएंगी जिनमें कि आयरन जहां जहां जमा हो रहा है, जिस जिस अंग में जमा हो रहा है उसकी हमें अगर इलाज करना पड़ेगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सस्ता होगा। जो इवन हमें इन फिल्टर इन लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो खून चढ़ता है वो साधारण खून नहीं होता है, ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड खून चढ़ता है जिसमें काफ़ी खर्चा आता है, तो सरकार हमारे तो सरकारी अस्पताल इसलिए सरकार खर्चा बियर करती है, और नहीं तो हम लोग जो ल्यूकोसाइट डिप्लीटिंग फिल्टर्स यूज़ करते हैं उसका एक फ़िल्टर का कॉस्ट ही 1800-2000 रुपए है, तो हर ट्रांसफ्यूजन के लिए वो यूज़ होते हैं, तो खर्चा सस्ता नहीं है, इसीलिए किसी अस्पताल से या एनजीओ के तहत अगर इन्हें मिल रहा है तो इनको काफ़ी फ़ायदा रहता है।
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मैमन सर, थैलेसीमिया माइनर क्या आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं?
1: देखिए बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि मैं थैलेसीमिया के लिए कह चुका हूँ कि आयरन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, तो अगर थैलेसीमिया माइनर हैं तो भी आयरन सप्लीमेंट जब तक बिल्कुल आयरन डिफिशियंसी डॉक्यूमेंटेड नहीं है तब तक नहीं लेना चाहिए, ज़रूर डॉक्टर से परामर्श करें। कायदे से तो थैलेसीमिया माइनर में भी कुछ हीमोलिसिस या कुछ RBCs जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, इसलिए उनको आयरन की कमी नहीं होती है, आयरन ज़्यादा ही होता है, तो जब तक बिल्कुल ही ये ना पता हो कि हाँ आयरन कम है शरीर में तभी लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज लेना नहीं चाहिए।
0: तो क्या इससे जुड़ी कोई रीसेंट रिसर्च है कि जिससे लगे कि हाँ इस आगे नहीं होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काफ़ी नई दवाइयां आ रही हैं जिनसे लेने से, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं, कुछ लोग किसी किसी चीज़ का सेवन करते रहते हैं जिनसे आपका आयरन का ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स है उसका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, और जो आपके अपने शरीर में बन रहे होते हैं RBCs, जो रेड सेल्स बन रहे होते हैं, लाल कोशिकाएं बन रही होती हैं, वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं, उनकी रहने की अवधि थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको खून उतनी जल्दी नहीं चढ़वाना पड़ता है। तो ये कई नई दवाइयां आई हैं अभी हाल में, पिछले 3-4 साल में, जिससे कि हम ये संभव प्रयास कर सकते हैं कि इनका खून अगर 14 दिन पर चढ़ रहा है तो हो सकता है कि 17 दिन पर चढ़े या खून की चढ़ाने की मात्रा कम हो जाए।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले आपने बताया था कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका इलाज है, तो क्या उससे ये, जैसे डिजीज़ जेनेटिक है, तो क्या उससे ये है कि आगे की जो जनरेशन है उसको ये नहीं होगा अगर इंसान अगर ये करा लेता है तो?
1: नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट उस मरीज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन जीन्स नहीं चेंज होती है, तो आप ट्रांसप्लांट करके जो है बोन मैरो बदलते हैं, जीन्स नहीं चेंज होती हैं, तो जीन्स तो वही रहेंगी, तो आपको ध्यान आगे की नस्ल के लिए तो देना पड़ेगा।
0: कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आगे ये चीज़ ठीक हो जाए आगे जनरेशन में ना हो?
1: देखिए उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो कैरियर

0: पूछ रहे हैं, तो मैं ये एक आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया रोगी जो है बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ उन्हें दिक्कत ये है कि उन्हें खून चढ़वाना पड़ता है और इसलिए उन्हें खून संबंधित बीमारियां होने की संभावना रहती है, और थैलेसीमिया से ग्रस्त होने की वजह से उनको अपने शरीर में कुछ कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनको कोई परेशानी और नहीं होती है। तो उनके लिए जो है आप सारी दवाएं, सारी खुराक वो दे सकते हैं जो कि नॉर्मल आदमी को दे सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने बताया कि आयरन जो है, जिन चीज़ों में आयरन है वो नहीं लेनी है। तो कई बार हम लोग जो है आयरन के वैसे जो बर्तन होते हैं उनमें खाना खाते हैं, वो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा लोग आज की तारीख में नहीं लेते हैं, लेकिन उनमें इनको खाना और पानी नहीं देना चाहिए।
1: इन सब चीज़ों के साथ ऐसी कोई जागरूकता या अवेयरनेस जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है?
0: लोगों के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि अपना जो है जब भी अगली बार जांच कराएं तो उसमें ध्यान दें कि उन्हें थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, और अपने बच्चों में ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आपके बच्चों में या आपके बच्चों के जो बच्चा हो तो उसे थैलेसीमिया हो। तो आज विश्व थैलेसीमिया दिवस पे मैं यही सबसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों के बारे में तो ज़रूर देखें और ये सोचें, अगर आपकी शादी नहीं है तो अपने बारे में भी स्टेटस क्लियर कर लें, क्योंकि कोई भी अगर हम लोग सब जागरूक रहेंगे और अपना हमें पता होगा कि हम थैलेसीमिया माइनर हैं या नहीं हैं, मैं मेजर को तो पता ही है, जो थैलेसीमिया माइनर अगर हमें पता है कि हम नहीं है तो कम से कम हम आगे आने वाली नस्ल को तो थैलेसीमिया जैसे रोग से बचा सकते हैं, और तभी जा करके धीरे धीरे कम होगी ये बीमारी और हमारा जो इतनी परेशानियाँ हैं वो किसी को हमारे घर में नहीं झेलनी पड़ेगी।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे आखिर में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, सबको स्वस्थ रहना चाहिए, और थैलेसीमिया जैसी बीमारी जो कि प्रिवेंट की जा सकती है और जिसके लिए सरकार काफ़ी रोकथाम कर रही है, जो एंटीनेटल मदर्स हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी भी नेस्ट्रॉट और काफ़ी जांचें होती हैं, तो उसका ज़रूर जांच कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं अपने जो जच्चा है उनका, जिससे कि ये सारे टेस्ट हों, और अपनी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट जब भी अगली बार कराएं तो डॉक्टर साहब से ज़रूर एक बार थैलेसीमिया के बारे में पूछें, जिससे कि आपका भी ज्ञान बढ़े और आप आगे आने वाली नस्लों को थैलेसीमिया जैसी बीमारी से बचा सकें।
1: तो श्रोताओं, थैलेसीमिया से लड़ाई सिर्फ अस्पतालों से में नहीं बल्कि जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ भी लड़ी जाती है। अगर समय रहते जांच हो और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे तो आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी और आपको धन्यवाद, श्रोताओं को भी धन्यवाद।
1: आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही उपयोगी और जागरूकता से भरे कार्यक्रमों के लिए। साथ ही आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है health@delhi.gmail.com। दोस्तों, आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो श्रोताओं, आप भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। बीमारी कोई भी हो, जागरूकता ज़रूरी है, और यही संदेश लेकर आता है आपका अपना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

गांव वालों बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम सुनते रहिए 102.7 FM।

0: तो तुम देखो रेड लाइट पे खड़े हो,
1: जी
0: पता है भी रेड लाइट है मैं खड़ा, मेरे पीछे ना हॉर्न मारी जाएगा, समझ नहीं
1: बस
0: आंदी भी वो क्यों शौक ना थोड़ा खड़ा आगे बंदा,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इन चीजों का अपने आप चाहिए है।
1: इन्हां चीज़ां का सारे ध्यान रखना चाहिए भाई, क्योंकि सारे आपो अपने घरों जो निकलते ये सोच के कोई नहीं निकलता कि अज मैं किसी बंदे परेशान करा।
0: हुण जदों फॉरन कंट्री गया सी उत्थे होरन दा रवाज ही नहीं हैगा जी, होरन तो मारा नहीं दिंदे उत्थे।
1: बस बस बस यही चीज़ां मैं इत्थे लियाउणियां जी, तुसीं चिंता नहीं करनी, तुहाडे अखां दे सामने तुसीं देखोगे कि जलंधर किन्ना खूबसूरत हो गया, होरन दी आवाज़
0: बल्ले
1: नहीं सुनाई
0: बल्ले
1: देनी।
0: बल्ले बल्ले, वैसे तो बहुत मजा आ रहा था प्रोग्राम सुन के।
1: ठीक है जी, बहुत वधिया लगा सानू भी सतीश जी,
0: नहीं एक मिनट जी, तुहानूं इस गल्ल दा श्रेय देंदे कि तुसीं बड़ी मेहनत नाल प्रोग्राम तैयार करके लियांदे हो,
1: बहुत बहुत
0: बहुत बहुत
1: शुक्रिया
0: शुक्रिया जी।
1: शुक्रिया जी, तुसीं मेहनत की, एक पासे तुसीं फोटो भी भेजी, दूसरे
0: चलो
1: पासे कॉल भी लगाई, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुहाडा गाना पेश कर रहे हैं जी रेडियो सैट ते,
0: जी जी
1: ओके जी, शुक्रिया जी। लो जी, मैं कहा किन्नियां वधिया वधिया गल्लां हो गईयां, गल सच है। मैनू एक मेरा कलीग आख रहा सी छोटा मित्रों, कहिंदा जे जनाब आ जिहड़ा अज दा यूथ है ना, कहिंदे रीलां स्क्रोल करन ते इन्ना टाइम ला देगा ना, लाल बत्ती दे उत्ते सिग्नल दे उत्ते खड़ा होण दा टाइम नहीं। और कदे कदे इदां हुंदा है कि जदों हरी तों संतरी हो के लाल लाइट हो जाती है ट्रैफिक दी, ते बंदा उदों भी बड़ी तेजी नाल अपना टू व्हीलर ते फोर व्हीलर कढ़न दी कोशिश करता, ते इसी कोशिश च फिर एक्सीडेंट दे चांस वध जांदे आ। सो भाई सबर करोगे तां फल मिठा मिलेगा, तो अगर फल मिठा चाहिए तो सबर करना पैना, इस करके भाई अगे पिछे देख के चलना चाहिए। यहो जहा गाने की फरमायश आई है जी सतीश गुलियानी दी जी।
2: ए भाई दर देख के चल।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

बाहर है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: दोस्तों एक होर फिल्म है जो कि बहुत ही खास फिल्म है, जो कि बहुत ही वड्डे सोशल इशू दे बारे गल करती है। ये फिल्म है पैडमैन, जिहड़ी कि 2018 दे विच आई सी। इहदे विच काम कीता है अक्षय कुमार, राधिका आप्टे, सोनम कपूर ने। इहनू डायरेक्ट कीता है आर बालकी ने। इस दे विच गल हुंदी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कोई भी जिहड़े टैबूज बने हुए हैं पीरियड्स नूं लैके, मेंस्ट्रुएशन नूं लैके, उहनू किद्दां असीं ब्रेक करना है ते किद्दां न्यू वेज दे विच उहनू लैणा है ते बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करना है।
1: ते दोस्तों लक्ष्मी जिहदा करैक्टर निभाया अक्षय कुमार ने, वह अपनी वाइफ नूं मेंस्ट्रुअल दे दौरान अनहाइजीनिक क्लोथ यूज़ करते वेखदा है, वह शॉकड हो जाता है कि बेसिक हाइजीन प्रोडक्ट्स इन्ने एक्सपेंसिव क्यों ने। जदों वह लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स बनाने की कोशिश करता है, सोसाइटी उसका मजाक उड़ाती है, लोग उसनों पागल कहते हैं, तो फैमिली भी उसके अगेंस्ट हो जाती है, पर वह हार नहीं मनता। आखिरकार वह वुमेन हाइजीन लई रिवोल्यूशन बन जाता है। तो दोस्तों इस मूवी सानू की मैसेज दें दिए जब्स?
0: ये मूवी सानू यही मैसेज दिंदी है कि इदा पीरियड्स नू बहुत ही नॉर्मल वे च लेना चाहिए, उहदे तो डरना नहीं चाहिए। अजकल लोग की पीरियड्स दे बारे नॉर्मली नहीं गल करते, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। पीरियड एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये फिल्म दसदी है इस सोशल मैसेज नू लोकां तक पहुँचाती है, तो दसदी है किदा कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, तो इहदे विच वुमेन्स दी हेल्प करनी चाहिए है।
1: तो ये बिल्कुल ही एक नैचुरल प्रोसैस है, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस दा हर सोसाइटी लई जरूरी है। इस चीज़ दे विच अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी मूवी जड़ी बेस्ड है इसे चीज़ ते बेस्ड है कि असी इन चीज़ों नू कितना डिफरेंट तरीके नाल देखते हैं। जे आप किसी शॉप ते चले जाइए, उत्थे भी असी बिल्कुल चीज़ों नू पर्दे विच करन दी कोशिश करते हैं, या फिर मतलब बहुत वारी असी ये चीज़ नोटिस कीती है, बट इहदे विच इहदा कोई कुछ नहीं है। इहदी एजुकेशन सोसाइटी दे विच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।

वेलकम बैक दोस्तों। कई बार ऐसे सोचते हैं जी कि मेरे को पैसा नहीं है, मैं दुनिया लिए की कर सकता। आज की एक सच्ची कहानी थोड़े वास्ते लेके आया, जो कहानी है जी हरेकला हजब्बा की। वह कर्नाटका दियां सड़कां ते संतरे वेचते सन, पढ़े लिखे नहीं सन, पर जो एक विदेशी ने उन्होंने संतरे का भाव पूछा तो वह जवाब नहीं दे सके क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी नहीं आती सी। उस दिन उन्होंने एहसास होया कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, तो उन्होंने अपने संतरे वेचन की सारी कमाई जोड़ के ना पिंड विच एक स्कूल बना दिता। तो साल 2020 दे विच भारत सरकार ने उन्होंने इन्हों यत्नों की शलाघा करते हुए उन्होंने पद्म श्री दे नाल नवाजिया। दोस्तों, एक मामूली संतरे वेचन वाला जे सिक्ख्या की क्रांति लिया सकता है तो असी क्यों नहीं लिया सकते। बस साडा एक निका जहा कदम इतिहास बना सकता है। मंजिलां उन्हां नूं मिलदियां ने जिन्हां दे सुपनियां च जान हुंदी है। खंभां नाल कुछ नहीं हुंदा दोस्तों, हौसलियां नाल उड़ान हुंदी है। बस जेकर इन्हां हौसलियां ने एक बार उड़ान फड़ ली ना, तां फिर हर कोई ये कहेगा मैं वेखां तुहाडी फोटो आ वार वार।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौंक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
2: FM 102.7 MHz ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਰੇਨਬੋ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 6:20 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਠੀਕ 6:20 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ। ਠੀਕ 6:30 ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज पंजाब लोक भवन विखे विश्व रेडक्रॉस दिवस मौके कराए गए राज पदरी समागम की प्रधानगी की। पंजाब सरकार ने आज यूनिफाइड सैंक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करके माली शासन विच एक मड्डा मील पत्थर कायम किया है। भारत की सिमरनजीत कौर शांघाई विच तीरंदाजी विश्व कप पड़ा दो विच औरतों के रिकर्व व्यक्तिगत मुकाबले के सैमीफाइनल विच पहुंच गई है। हुण खबरां विस्थार नाल। राष्ट्रीय महिला कमिशन NCW ने घिनौने जिनसी अपराधा के मामले विच तेज़ मुकदमिया मजबूत निगरानी और पैरोल से पाबंदी लाने की मांग की है। एक बयान विच कमिशन ने औरतों के बच्चों विरुद्ध घिनौने अपराधा विच शामिल दोषियों नूं कंट्रोल करन वाले मौजूदा पैरोल ढांचे से गंभीर चिंता प्रगट की है। NCW चेयरपर्सन विजया रैतकर ने कहा कि कमिशन जल्द ही केंद्र सरकार नूं सिफारशा सौंपेगा जिस विच बलात्कार वधे हुए जिनसी हमले ते औरतों ते बच्चों विरुद्ध होर गंभीर अपराधा के मामलों में दोषी व्यक्तियों लई पैरोल ते पूरी तरह पाबंदी लाने की मांग की जाएगी। चेयरपर्सन ने कहा कि हाल ही विच नसरापुर जिनसी हमले के मामले ने जनतक सुरक्षा ते समाज विच औरतों के विश्वास बारे गंभीर चिंता पैदा की ने। उन्होंने जोर देकर कहा कि अजिहे मामलों में औरतों के बच्चों की सुरक्षा ते माण नूं सब तो उपर रहना चाहिए है। कमिशन औरतों के बच्चों विरुद्ध अपराधों नाल संबंधित मामलों में न्याय प्रदान करन दे ढंग नूं मजबूत करने लई व्यापक प्रणालीगत सुधारों की भी सिफारिश करेगा। पंजाब कर विभाग की स्टेट इंटेलीजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट सिपू ने एक बहुत ही संगठित फर्जी बिलिंग नैटवर्क का पर्दाफाश करदिया लुधियाना की एक फर्म के डायरैक्टर के अधिकारित दस्तखतकर्तावान 85.4 करोड़ रुपए के जाली लैन देन के गलत तरीके नाल फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लैन 15.56 करोड़ रुपए का वड्डा GST घोटाला करन के दोष में गिरफ्तार किया है। इस बारे जानकारी देंदिया खजाना आबकारी कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुलजम फर्म योजनाबद्ध ते संगठित टैक्स चोरी विच शामिल सी। उन्होंने बिना असल विच माल प्राप्त किए कई राज्यों विच गैर मौजूद ते धोखाधड़ी वालियां फर्मां वल्लों जारी किए गए जाली चलाना बिलों ते आधार ते फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया। टैक्स चोरों को सख्त संदेश दिंदिया आबकारी मंत्री चीमा ने कहा कि जांच दौरान इकट्ठे किए गए ठोस सबूतों के मद्देनज़र दोषी नूं अज गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक और इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी पंजाब के प्रधान श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज पंजाब लोक भवन विखे विश्व रेडक्रॉस दिवस मौके कराए गए राज पदरी समागम की प्रधानगी की। इस समागम रेडक्रॉस के संस्थापक सर हैनरी टूडेंट की जन्म वरिकण नूं समर्पित सी। समागम नूं संबोधन करदिया राज्यपाल ने नागरिकों नूं दया सहयोग ते निष्काम सेवा की भावना नूं मजबूत करके समावेशी समाज की सिरजना लई अगे आउण दा सद्दा दित्ता। उन्होंने इस साल के विषय ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी का जिक्र करदिया कहा कि यह दिन उन्होंने सेवादारों को समर्पित है जो बिना किसी वितकरे के मुसीबत विच घिरे लोगों की सेवा करते हैं। राज्यपाल ने पंजाब रेडक्रॉस वालों भयानक खड़ा दौरान किए गए राहत कार्यों की शलाघा की। उन्होंने दसिया कि प्रभावित परिवारों को भोजन दवाइया तंबू और होर जरूरी राहत समगरी मुहैया करवाई गई। ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देंदे उन्होंने कहा कि पंजाब रेडक्रॉस ने हंगामी प्रतिक्रम सिखलाई सिविल डिफेंस सहायता के विशाल खूनदान कैंपा विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख भाई कन्हैया जी की मिसाल देंदे राज्यपाल ने कहा कि पंजाब की निष्काम सेवा और दया की रवायत रेडक्रॉस मुहिम की असल भावना दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भाई कन्हैया जी ने जंग दौरान बिना किसी भेदभाव के दोवें पक्षों के जख्मी फौजियों की सेवा की जो रेडक्रॉस की स्थापना तो सदियां पहला ही मनुखता ते निष्काम सेवा दी कदरां कीमतां जीवंत करता है। समागम दौरान राज्यपाल ने भाई कन्हैया जी ते हैनरी ट्यूनेंट नूं श्रद्धांजलि भेंट की। उधर जिला रेडक्रॉस सोसायटी कपूरथला वालों भी विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाया गया। इस मौके सकत्तर सिंह बल वधीक डिप्टी कमिश्नर कम सीनियर वाइस प्रधान जिला रेडक्रॉस सोसायटी कपूरथला वालों अपने संबोधन में सारे अपील की गई कि वह सरबत के भले वास्ते रेडक्रॉस नाल वध तों वध जुड़न अते जेकर उन्हां दे ध्यान विच कोई लोड़वंद व्यक्ति आउंदा है तां उस नूं बनती सहायता दिवाउण लई रेडक्रॉस नाल संपर्क करन लई प्रेरणा देण। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की खुशी में आकाशवाणी वालों देश भर समेत पंजाब विच भी अपने जलंधर ते पटियाला स्टेशन ते भलके 9 मई नूं एक विशेष वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। यह समागम आकाशवाणी वालों पिछले 9 दहाकों दौरान स्रोतियों निरंतर दित्तियां गई बेमिसाल सेवावां नूं समर्पित होगा। इस संबंधी जानकारी देंदिया आकाशवाणी पंजाब के कलस्टर हैड ते डिप्टी डायरैक्टर जनरल इंजीनियरिंग रणजीत मेहरा ने दस्सिया कि इस वॉकथॉन विच आकाशवाणी के अधिकारी ते मुलाजमां समेत अनाउंसर्स कलाकार ते स्रोते भी आकाशवाणी के शानदार 90 सालों के सफर नूं यादगारी बनाउण लई इस विच शिरकत कर रहे ने। आकाशवाणी नाल बीते 60 सालों तो वध समय तो जुड़े स्रोते गुरमीत सिंह खानपुरी ने अपनी भावनावां

नमस्कार, शाम 7 बजे थे एफएम न्यूज हेडलाइंस। राष्ट्रीय महिला कमीशन एनसीडब्ल्यू ने किनौने जिनसी अपराधा दे मामलों विच तेज मुकदमिया, मजबूत निगरानी अते पैरोल उते पाबंदी लाउण दी मांग कीती है। पंजाब कर विभाग ने एक संगठित फर्जी बिलिंग नेटवर्क का सफलता नाल पर्दाफाश करदिया लुधियाना की एक फर्म के डायरेक्टर नूं वड्डा GST घोटाला करन दे दोष विच गिरफ्तार कीता है। पंजाब दे राजपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने अज पंजाब लोक भवन विखे विश्व रेड क्रॉस दिवस मौके कराए गए राज पदरी समागम की प्रधानगी की। पंजाब सरकार ने अज यूनाइटेड सैंक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करके माली शासन विच एक वड्डा मील पत्थर कायम किया। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की खुशी विच आकाशवाणी वालों देश भर समेत पंजाब विच ही अपने जलंधर अते

मैं भारती भारत दे रहण वाला, मैं भारती भारत दे रहण वाला। हाँ मैं पेंडू पर शहरिए टंग दा हाँ, समझा फारसी उर्दू भी खूब बोला, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी अंगदा हाँ। FM 102.7 MHz ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। तेजी लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम फिल्मी दुनिया, चेहरे ते मिठी मुस्कान, दिल विच जोश प्यार दोवें हाँ जोड़, हाजिर तुहाडे दोस्त आरजे नेहा रलहन। रात 8 बजे तक असी एंजॉय करांगे प्रोग्राम जिस विच फिल्मी दुनिया दियां करांगे गल्लां बातां। इस एक घंटे के प्रोग्राम दे विच तुहानू की कुछ अज खास सुनन नू मिलेगा, गल करदे हां उस बारे। दोस्तों फिल्मी दुनिया जिवें कि तुसीं जानदे हो, इस प्रोग्राम राहीं असीं तुहानू सिनेमा दी दुनिया दी सैर कराने हां, उन्हां खास शख्सियत दीआं गल्लां करदे हां, उन्हां खास फिल्मी हस्तियां दी गल करदे हां जिन्हां करके सिनेमा सिनेमा है, जिहदे करके साडे तक अनगिनत कहानियां पहुंचदियां ने, जो सानू हसांदियां भी है, रुलांदियां भी है, बहुत कुछ सिखांदियां भी है, ते समझाण विच भी मदद करदी है। मतलब असी इंज समझ सकते हैं समाज दे दुनिया दे वक् वक् पहलुआं नू साडे तक लैके आंदा है सिनेमा, ते बस उस सिनेमा नू करदे हां असी सलाम प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच। गल करिए अज दे प्रोग्राम दी, तुहानू इस प्रोग्राम दे विच सब तो पहला असी गलबात करांगे उन्हां खास फिल्मां दी जिहड़ियां पिंडां दे उत्ते आधारित है। हुण पिंडां दी गल करिए तां पिंड साडे सभ्याचार, साडे अर्थचारे ते साडे जिहड़ा समाजिक ढांचा है उसदा नींह है। अज भी वड्डी गिणती विच दोस्तो जिहड़े लोग ने उह इन्हां पिंडां विच रहिंदे आ। पिंडां दी जिंदगी खुल डुल वाली हुंदी है, कुदरत नाल सांझ शरीर नू ते मन दोहां नू सेहतमंद रखदी है। ते बॉलीवुड ने भी पिंडां दी खूबसूरती नू फिल्मां राहीं दर्शकां तक पहुंचाया, दर्शकां दा खूब प्यार भी मिलिया इन्हां कलाकारां नू जिन्हां ने उन्हां दे पिंडां दी खुशबू स्क्रीन ते दिखाई। शहरां दीआं उच्चियां इमारतां नू छड्ड पिंडां दी सादगी नू तरजीह दित्ती। ते बस फिर फिल्मी दुनिया दे विच अज असीं सोचिया उन्हां फिल्मां बारे ही गलबात करांगे। ते मैं कहा जी प्रोग्राम दा आगाज करन जा रहे हां एक बड़े ही खूबसूरत गीत दे नाल। उम्मीद करदे हां गीत तुहानू पसंद आएगा, ते इस गीत तों बाद हाजिर होवांगे।

बच्चों, गली गली और गांव गांव में पीटो आज ढंढोरा। गली गली और गांव गांव में पीटो आज ढंढोरा।

हाँ जी, मैं कह रही किशोर कुमार की आवाज में तुम गीत सुनिया गली गली गाँव गाँव। मैं कह जी टिंडोरा एक होर भी जोड़ा है बजाना चाहिए है टिंडोरा की प्रोग्राम फिल्में दुनिया का जोड़ा है आगाज हो चुका है, तो बड़ा खूबसूरत जोड़ा है आगाज होया है। तो फिर मैं कह जी इस सिनेमा दी रेल गड्डी नू अगे वधाने हैं, तो अज पिंडा दे वल पिंडा दे एक एक स्टेशन वाल चलांगे। इस स्टेशन दे विच सब तो पहला गल करांगे सन 1953 दे विच रिलीज हुई हिंदी क्लासिक फिल्म। फिल्म का नाम से दो बीघा जमीन, बीमल रॉय की डायरेक्शन दे विच बनी बा कमाल फिल्म, जिसके स्टार कास्ट की गल करिए बलराज सहानी, निरूपा रॉय, रतन कुमार ते मीना कुमार री वर्गे जड़े नाम इस विच शामिल है। कहानी फिल्म की बेस्ड है रविंद्रनाथ टैगोर की कविता दुई बीघा जोमी। इस कविता तो इस फिल्म का बीमल रॉय प्रेरणा मिली सी। फिल्म की कहानी की गल करिए तो दोस्तों एक कहानी है गरीब किसान शंभू यानी कि बलराज सहानी की, जो शंभू के किरदार विच नजर आते हैं, जिस कोल सिर्फ दो बीघा जमीन है, तो वह दो बीघा जमीन जो है वह भी किराए से है। पिंड का एक लालची जमींदार है जो उसकी जमीन से मिल लगाना चाहता है। हुण शंभू नूं पुराना कर्जा मोड़न लई अदालत भी घसीटदा है। अपनी जमीन बचाने लई शंभू नूं बहुत घट समय विच एक वड्डी रकम की लोड़ हुंदी है, पैसों की कमी हुंदी है, तो इस कमी नूं पूरा करन वास्ते पहुँचदा है कलकत्ते। रिक्शा चलांदा है तो शहर की पीड़ ते गरीबी विच बहुत संघर्ष करदा है, पर अंत विच उहदी जमीन उहदी प्यारी जमीन जिहड़ी है उहदी मिट्टी जिहड़ी है उहदे हत्थों चली जाती है। तो फिल्म का जोड़ा एंड है बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है कि किस तरह जो शंभू एक मुठ्ठी भर मिट्टी जो लैन ली हाथ अपना जमीन च पाता है, पर वो मिट्टी नहीं लै पाता, उसनों मिट्टी चुकन तो भी जोड़ा है रोक दिता जाता है। इस नाल ही इस फिल्म ने वखरे मुकाम हासिल किए। इस फिल्म को बैस्ट फीचर फिल्म तो मिले राष्ट्रीय अवार्ड के नाल तो सम्मानित की गई, इस तो इलावा बेस्ट फिल्म ते बेस्ट डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड नाल भी नवाजा गया। ते तो हम दस चलिए दो बीघा जमीन जड़ी है ये पहली भारतीय फिल्म सी जिसनों कैंस फिल्म फेस्टिवल विच भी दोस्तों

दे सकते। जी हाँ, आज टाइम ट्रेवल हो रहा है मैगे जी। सिनेमा एक्सप्रेस तो कितनी नहीं मिलती सिवाय एफएम रेनबो दे। जी हाँ, सिनेमा एक्सप्रेस हूँ मैं कह जी अगले जिस मूवी के सेट पे पहुंच के। फिल्म का नाम है जी मधुमती। 1958 दे विच रिलीज़ हुई अगली क्लासिक हिंदी फिल्म जो कि बेस्ड है पुनर्जन्म के उत्ते। पुनर्जन्म के उत्ते दोस्तों बड़े बड़िया सारिया अपना फिल्मा वेखियाँ अलग अलग समय से, अलग अलग स्टार कास्ट दिया फिल्मा भी देखी है, सीरियल्स भी देखे है। पुनर्जन्म जदों एक बंदा जदों है जदों दुनिया छड़ जाता है उस तो बाद जड़ा है उस बंदे का जन्म होंदा है ते किस तरह पुरानी जिंदगी उस नवी जिंदगी नू प्रभावित करती है। इस प्लॉट ते जड़ी है, इस थीम ते जड़ियां फिल्मां बनदियां हैं, उन्हां विचों ही एक फिल्म है मधुमती, बिमल रॉय दी अगली क्लासिक फिल्म। फिल्म की स्टारकास्ट की गल करिए इस दे विच नजर आए अनंत देवेंद्र के किरदार दे विच दिलीप कुमार, मधुमती का किरदार प्ले किया विजयंती माला ने। राजा उगर नारायण के किरदार विच प्राण नजर आए तो इस दे नाल ही नाल मैं कह जी एक अजिहा ना जो कि पुरानिया फिल्मों की जड़ी है जान ते शान दोनों मनिया जाता है जॉनी वॉकर इस फिल्म दे विच चरणदास के किरदार विच होंदे आ। फिल्म की कहानी हुण शुरू करिए तो कहानी है एक पहाड़ी इलाके विच जो आनंद है उसकी कहानी है जो उत्थे एक कबायली कुड़ी जिसका नाम है मधुमती उस नाल प्यार करता है। एक जालम जिमीदार कारण जिहड़ा मधुमती जिहड़ी है उसकी मौत हो जाती है। हुण आनंद भी कहिंदे खुदकुशी कर लैंदा फिल्म विच पर बाद विच आनंद का पुनर्जन्म हुंदा है अते वो अपने पुराने जन्म के दुश्मन नूं सज़ा दिवाउण लई मधुमती दे हमशकल माधवी की मदद लैंदा है। तो कहानी जिहड़ी है बड़ी उस समय इंट्रस्टिंग मनी गई क्योंकि उस समय पुनर्जन्म के उत्ते बहुत सारिया फिल्मां नहीं सी बनिया हुई। फिल्म दीआं प्राप्तियां की गल करिए दोस्तों 1958 की सब तो वध कमाई करन वाली एक फिल्म सी। तो फिल्म ने 9 फिल्म फेयर जड़े अवार्ड जितते। बेस्ट फीचर फिल्म द नेशनल अवार्ड तो मिले ही मिले, इस नाल ही फिल्म

મેગેજી ઠેજો ઠેજો પ્રોગ્રામ હજી બાકી હે રામ રામ નો જે વક્ત હે થોડા प्रोग्राम फिल्में दुनिया के सिनेमा एक्सप्रेस अगली जिस स्टेशन ते पहुंच गया वो है जी 1970 आई फिल्म गोपी। फिल्म की कहानी की गल करते हैं, सब तो पहला गोपी की कहानी है जो कि एक पिंड विच रहने वाला ईमानदार सीधा साधा पर बेरोजगार नौजवान है। किस तरह उसकी जिंदगी दे विच उतार चढ़ाव आते हैं, किस तरह एक कुड़ी की जिहड़ी है उसकी जिंदगी दे विच जो मैं कह जी एंट्री होंदी है, किस तरह उसकी जिंदगी बदलती है, तो पिंड का जमींदार गोपी के परिवार को किस तरह परेशान करता है, तो किस तरह गोपी नीडर होकर अपने परिवार अपना अपने पिंड की जड़ी है शान वधांदा है, तो उस जमींदार को जड़ा है चंगा जड़ा है सबक सिखांदा है। देखिए जी प्रोग्राम दे विच वेला जड़ा है वो हुन साढ़े ये भी इशारा कर रहा है समा थोड़ा बाकी है, क्योंकि इस प्रोग्राम तो बाद एक होर खास प्रोग्राम तो हाडे वास्ते लैके हाजिर होवांगे। शुक्रवार का दिन है मैं जी, तो पब्लिक मंच प्रोग्राम लैके बहुत जल्द हाजिर होवांगे, तो छेती छेती तैयार हो जावो क्योंकि अज प्रोग्राम करनी है गल्लां बातां, पर समा रहेगा 8 बजे तो लैके 9 बजे तक। फिल्म अगली जिस बारे गलबात करने जा रही हूँ है जी मेरा गांव मेरा देश। 1971 दे विच आई एक रोमांटिक क्लासिक फिल्म। फिल्म दे विच नजर आए धर्मपाजी का साथ दिता आशा पारिख ने। पिंड दिया गलियां दी खूबसूरती, दोनों दी जुगलबंदी ते विद्रोही सुभा फिल्म नूं खास बनांदा है। इस नाल ही फिल्म दे जिहड़े गीत भी बड़े मशहूर ने, ते इन्हां गीतां दे विचों ही सुनदे हां जी एक गीत, ते मैं कह जी इस तो बाद कुछ होर फिल्मां लैके बहुत जल्द हाजिर होंगी, जाना किते नहीं है। लता मंगेशकर जी दी आवाज़ विच आ रहा है गीत।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जाएगा।
1: बस बस बस बस मैं कह जी सिनेमा एक्सप्रेस हुन अपनी आखिरी जड़ी है स्टेशन तक पहुंच गई है। ना ना ये सफर जारी रहेगा, पर मैं कह जी ये जड़ा सी अज खास पिंडर नू जड़ा है याद कर रहे हैं प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच। इस दे विच मैं अगली जिस फिल्म दा तो हाड़ नू दसन जा रही हूं, फिल्म है जी चित चोर। 1976 दे विच आई, बासु चटर्जी द्वारा निर्देशन किया गया। इस फिल्म दे विच नजर आए अमोल पालेकर, जरीना वहाब ते विजेंद्र घाटके। फिल्म की कहानी है एक पिंड की कुड़ी गीता की, जिसकी शादी मुंबई के एक इंजीनियर नाल तय होने वाली होंगी है। तो बस फिर गीता का पिता जड़े ने वो एक इंजीनियर ने, तो उन्होंने लैन वास्ते स्टेशन जाते हैं, पर गलत फहमी होंगी है तो वह किसी होर नू इंजीनियर समझ के घर ले आते हैं। बस ये हसाती है फिल्म तो आखिर पर्दाफाश हों, तो पिता जी को एहसास हों कि लैके किसी होर आना से, पर लैके किसी होर ही जड़ा है आ गए ने। तो बहुत खूबसूरत कॉमेडी म्यूजिकल फिल्म है। तो इस दे नाल ही इस गीत का, इस फिल्म का जड़ा एक गीत पेश करने जा रही है यशुदास जी की आवाज़ में। तो इस बाद तुहाडे नाल साझा करांगे एक खास पंजाबी सिनेमा की शख्सियत बारे कुछ खास गल्लां बातां।

नमस्कार, एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर का ये रेनबो चैनल है। रात 8 बजे नीति पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस। राष्ट्रीय महिला कमीशन एनसीडब्ल्यू ने किनौने जिनसी अपराधों के मामले विच तेज मुकदमिया, मजबूत निगरानी अते पैरोल उत्ते पाबंदी लाने की मांग की है। पंजाब कर विभाग ने एक संगठित फर्जी बिलिंग नेटवर्क का सफलता नाल पर्दाफाश करदिया लुधियाना की एक फर्म के डायरेक्टर नूं वड्डा जीएसटी घोटाला करन दे दोष विच गिरफ्तार किया है। पंजाब दे राजपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने अज पंजाब लोक भवन विखे विश्व रेड क्रॉस दिवस मौके कराए गए राज पदरी समागम की प्रधानगी की। पंजाब सरकार ने अज यूनिफाइड सैंक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करके माली शासन विच एक वड्डा मील पत्थर कायम किया। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की खुशी विच आकाशवाणी वालों देश भर समेत पंजाब विच ही भी अपने जलंधर ते पटियाला स्टेशन ते पलके 9 महीनों एक विशेष वाकथन का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह रंधावा संधवा ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज नाल मुलाकात करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी रोकन संबंधी कानून दिया वख-वख मद्दां उत्ते विचार वटांदरा किया। अज पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना विच पंजाब पर तो आए

पराली दी संभाल सुचजे तरीके नाल करन वाले 207 अगावधू किसानां नूं विशेष तौर ते सन्मानित किया गया। एसन हुण तक दे FM न्यूज़ हेडलाइंस। न्यूज़ हेडलाइंस दा अगला प्रसारण तुसी सुनोगे रात 9 बजे। ते हुण तो कुछ चिरां दे इंतजार तो बाद पेश करांगे प्रोग्राम पब्लिक मंच।

0: प्रोग्राम पब्लिक मंच दे विच अगले जिहड़े दोस्त जुड़े ने उन्हां दा नाम पता जानना चाहांगे। हैलो
1: हैलो जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन ते कित्थों मिलाया जी फोन?
1: मैं कुलविंदर सिंह बोलदा, पिंड पिहाड़ा, जिला हुशियारपुर तों।
0: जी कुलविंदर जी, प्रोग्राम दे विच सरकारी हस्पतालां नूं लै के तुसीं की कहना चाहोगे कि हस्पतालां विच लोड़ींदी दवाई जिहड़ी हुंदी है ओह आसानी नाल मिल जांदी है जां संघर्ष करना पैंदा है?
1: इदां आ, मैं हॉस्पिटलां दे विच गया दो तीन बारी
0: जी,
1: जिहड़ी दवाई आ ओह तां उत्थे मिल जांदी आ, बाहरों लिखी नहीं उन्हां ने, पर समस्या इह सीगी कि जिहड़ा स्टाफ आ ना, डॉक्टर वा
0: जी,
1: जिदा मूहरे मरीज 50-60 बैठे होंदे आ, कल्ला डॉक्टर ना, ना ओहदे नाल कोई असिस्टेंट, ना कोई कहण वाला बैठ।

नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। रात दे 9 बज रहे ने ते पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

एक खास सूचना दोस्तों, क्रिकेट का विशेष प्रोग्राम स्टंपर्ड सीजन 7 फिर तो आ गया है। तुसी इस नू कल सवेरे 11:30 FM रेनबो चैनल ते 102.7 मेगाहर्ट्ज उत्ते सुनोगे। दोस्तों, क्रिकेट का विशेष प्रोग्राम स्टंपर्ड सीजन 7 फिर तो आ गया है।

वेलकम बैक है जी दोस्तों, प्रोग्राम सुन रहे हो दिल चाहता है। दोस्तों दे मैसेजेस साढ़े तक पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो एक एक करके सारे ही मैसेजेस नू प्रोग्राम विच शामिल जरूर करांगे। अगली नमस्कार सानू भेजी है जी चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा, बिमला अनेजा जी ने, तो फरमाइश है जी इन्हां दी जुगनू फिल्म का गीत गिर गया झुमका। लो जी झुमका, मैं क्या जी झुमका गिर गया गीत सुनांगे, पर इस नाल ही एक होर मैसेज आया है जी साढ़े तक सिरसा हरियाणा तो हिमांशु सेठी जी का। तो लो जी फिर इन्हां दोस्तों की रली मिली पसंद सुनते हाँ किशोर ते लता जी की आवाज़ के गीत।

उत्तम नगर दिल्ली तो बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश ते गीतिका खोरवाल। द मैसेज आया जी। इस नाल ही नाल एक और मैसेज साढ़े तक, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तो आया है। मैसेज करने वाले ने ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। मैगा जी सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल जैविर सिंह, डॉक्टर अमनदीप तेना दे साथी कालका तो मैसेज कर रहे ने। शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा जी। दोस्तों नमस्कार, लिखे सानू भेजी है नाई वाला।

एक खास सूचना दोस्तों, क्रिकेट का विशेष प्रोग्राम स्टंपर्ड सीजन 7वां फिर तो आ गया है। तुसी इस नूं कल सवेरे 11:30 बजे FM रेनबो चैनल 102.7 MHz ते सुनोगे।

जो कि सानू भेजिया है बत्ता परिवार ने। मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश जी का मैसेज। उस तों बाद रिंगनी छत्तीसगढ़ तो फरमाइश करता ने दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। फरमाइश है जी इन्हों की फिल्म सरगम का कहते गीत सुना दिता जाए रवि जी की आवाज। बिल्कुल जी, गीत तो असी सुनांगे ही, प्रोग्राम का नाम ही है दिल चाहता है, तुहाडा दिल जिहड़े गीत सुनन नू करेगा। पर नाल ही नाल मैसेजेस नू भी शामिल करते जाने हाँ ताकि कोई दोस्त रह ना जाए। सादुल शहर राजस्थान तो राम कुमार रिवाड़ चंद्रकला का मैसेज आया है। एक होर मैसेज आया जी मेरठ कैंट तो दिग्दर्शन ते कविता गौड़ दा। करणवीर हाउस पुचों कैंचियां बठिंडा पंजाब तो नमस्कार लिख के भेजी है प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन ते अभिजोत ने ते लिखते ने किसी भी गीत विच शामिल कर लिया जाए। तो लो जी फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद ते सुनते हाँ सरगम फिल्म का एक गीत।

पीके जी प्रोग्राम सुन रहे हो, दिल चाहता है। वाह, किशोर कुमार दी विच तुसी गीत सुनिया फिल्म सौतन तो। ते मैं कह जी दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है ते बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश आई है ते पूरी कोशिश करांगे ज़्यादा तो ज़्यादा फरमाइशां पूरियां करन दी, पर समय दी नज़ाकत दे तहत तुहाडे नाम जरूर प्रोग्राम विच शामिल किते जाणगे जेकर गीत ना शामिल किया गया। अगला मैसेज दोस्तों साढ़े तक पहुंचया है नोहर राजस्थान तो, नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु जी दा। फाजिल का तो मैसेज भेजा है विनोद काठपाल, परवीन, दीक्षा, जन्नत ते इना दी फरमाइश है जी, कहिंदे प्रेम रोग फिल्म दा कोई भी गीत जड़ा है सुना दिता जाए। बिल्कुल जी, गीत तो असीं सुनांगे इस फिल्म दा, पर कुछ मैसेजेस होर भी शामिल करन जा रही हैं। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र तो यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल, कोमल, शुभम, प्रियंका, आंचल, कुंज, पर्व, प्रवीण धीमान, चिराग, रजत, राजेश जी का मैसेज आया है। किसी भी गीत विच शामिल करने वास्ते कहा गया है। तो एक होर मैसेज पहुँच रहा है साढ़े तक, जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर ते उन्हां दे चाचा चाची पूरा मुलाना परिवार मैसेज कर रहा है। पदमपुर तो मैसेज आया है जी। इस तों बाद अगला मैसेज आया है जी पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश तो, जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी, रवि गर्ग शिमला तो मैसेज आया जी, नीतू गोयल, विकास गोयल, शिल्पा गर्ग जी का बहुत बहुत शुक्रिया इन्हां दोस्तों का। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा तो, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत ते गुरशब्द सिंह राहुल दा वी आया मैसेज। तो लो जी फिर इन्हां दोस्तां सारे दोस्तों की रली मिली पसंद ते सुनदे हां फिल्म प्रेम रोग का ये गीत।

दोस्तों प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच महज 11 मिनट बाकी है, पर इस समय दरमियान तुहाडे मैसेजेस तुहाडे नाम प्रोग्राम दे विच जरूर शामिल किए जाएंगे। तो जी मैसेज आया है सानू अगला, सत श्री अकाल लिख के भेज रहे ने काला कंबोज, रजनी बाला, सीरत जपजी ते गुरफतेह सिंह। इस नाल ही मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका का भी मैसेज है श्री गंगानगर तो। राजेंद्र जोड़ा, गुलजार सिंह, बस्ती शेख, जलंधर तो मैसेज लिख रहे ने, लिखते ने नदिया के पार फिल्म का गीत सुना दिता जाए, बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी बिल्कुल जी, प्रोग्राम विच जुड़े हो, मैसेज आया, गीत सुनांगे असी। पर बाकी दोस्त जिन्हां दे मैसेजेस पहुंचे हैं, जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल ते विलिस डिकैस्ट्रो दा भी आया मैसेज। ते इस नाल ही नाल एक होर नमस्ते साडे तक पहुंची है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र तो पी एस निर्मला नवाकर, विशाल मलकापुर तो नारायण इंगले, मंगला ते आशीष मुहेरकरता। पिंड ते डाकखाना निमानाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत ते करमजीत कौर का भी आया जी मैसेज, लिखते ने शामिल कर लिता जाए प्रोग्राम विच। बहुत बहुत शुक्रिया जी सारे दोस्तों का। तो लो जी फिर इन्हों की पसंद से सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत, हेमलता ते यशपाल जसपाल सिंह की आवाज़ के।

प्रोग्राम दिल चाहता है सुन रहे हो तुसी ते कड़ी दियां सुइयां इशारा कर रही ने प्रोग्राम विच जल्द तो जल्द जड़ा है बाकी दे दोस्तों दे नाम शामिल करन वास्ते। दोस्तों प्रोग्राम दे विच अगला जड़ा मैसेज साढ़े तक पहुंचा है उस वाल चलते हाँ। मकड़ परिवार का मैसेज आया है मन्नत मकड़ ज्योति भरत ते कमल सहानी पिंगा वाला चौंक गुराया तो मैसेज कर रहे ने। इस नाल ही चक 15 PS जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो सरबजीत सिंह जोसन सरबजीत कौर गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तो आदर्शपाल सिंह ते वैंकूवर कैनेडा तो रोबिन सिंह दा मैसेज आया है जी। नमस्कार लिख के भेजिए सानू सीमा मित्तल बारगो नगर जलंधर तो दिल्ली तो भी कृष्णा पार्क दिल्ली के कृष्णा पार्क तो सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना रजिंदर सिंह ओबराय का मैसेज आया है जी। तो इस ही नाल सलार पहलगाम कश्मीर तो पीरजादा मिराज उद्दीन नजम उद्दीन कैसर उद्दीन का मैसेज पहुँचया है। पिंड चंचेड़ी तहसील खरड़ जिला SES नगर तो प्यार भरी नमस्कार भेजी है लियाकत अली निशा शाहीन यासमीन अरमान मलिक वालों तो पूरे आकाशवाणी परिवार को इन्होंने प्यार भेजा है बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक होर दोस्त का मैसेज तो पहुँचया है दोस्तों पर इन्होंने अपना नाम पूरा लिख के नहीं भेजा तो बहुत सारे मैसेजेस इन्होंने लिख के डिलीट भी कर दिए। मैं कह जी नाराजगी इन्नी ज़्यादा नाम ही डिलीट कर दिता पर चलो कोई नहीं मैसेज करने वास्ते शुक्रिया। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ मंजन उत्तर प्रदेश तो राजेश शर्मा वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा मुन्नाबाई स्वर्णकार पिंकी आर्यन कृष्णा पीहू इन्हां दे नाल ही नाल बिंदु जिहदा मैसेज आया है बस्ती शेख जलंधर तो ते सारे दोस्त जिन्होंने प्रोग्राम दे विच अज शिरकत की अपना कीमती समा कट के सानू मैसेजेस किते बहुत बहुत शुक्रिया। ते इस दे नाल ही हुन वेला हो चुका है तुहाडे तो प्रोग्राम दिल चाहता है तो इजाजत लैण दा पर जाना किते नहीं है गीत सुनना है ते गीत तो बाद वापस मुड़ वापस आना है FM 102.7 MHz ते FM रेनबो सुन रहे हो तुसी ते मैं

प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, सुन रहे हो तुसे। नगमा यानी कि एक रही चीज जो बेशकीमती हुए बहुमूल्य हुए। प्यार भी रही ही चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं है, हर एक कीमत तो परे है। प्यार जिसनों मोहब्बत भी कह देने, इश्क भी कह देने, प्रेम भी कह देने। तो इस प्यार प्रेम इश्क नू अलग अलग चीज़ा दे नाल असी नापते तोलते हैं। इस ते ही किसी शायर ने लिखा है, प्यार तो है मगर इजहार का हौसला नहीं। ना जाने जब हौसला आए तो इस प्यार का क्या अंजाम हो।

इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुस्वा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं।

एक एक लम्हा गुजारा जा रहा है, एक एक लम्हा गुजारा जा रहा है होश में, ए जड़े किस्मत जो है तूफान की आगोश में, अब ये आलम है हमारा बंदगी के जोश में, एक सजदा बेखुदी में, एक सजदा होश में।

सुनो, जरा जल्दी मिला करो। हाँ, जरा जल्दी मिला करो, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें इकट्ठी रहती हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए होती हैं, इसलिए जल्दी मिला करो। चलो, अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। तुम हमारे क्या हो, हम ये समझाने कहाँ जाते। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, सुन रही हो तुसी अपने दोस्त आरजे निहारल दे नाल। प्रोग्राम दा अगला गीत पेश करन जा रहे हैं, आवाज़ लता मंगेशकर दी।

0: प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, हुन उस मंजर ते पहुंच गया है जिथे समा है तो हाडे तो इजाजत लैंदा, पर इस विश्वास ना कि जल्द मिलांगे, फिर मिलांगे। ते जांदे जांदे कुछ लाइना तो हाडे वास्ते, फिर चाहे जितनी कामत लेकर आ जाना, फिर चाहे जितनी कामत लेकर आ जाना, पहले अपनी जात से तुम बाहर आ जाना। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, दानंद मानिया तुसी अपने दोस्त आरजे निहारलन दे नाल। खुशगवार हाँ इस रात वास्ते, सारे ही दोस्तों दे प्यार वास्ते। जल्द मिलांगे, बहुत सारे प्रोग्राम तक खजाना लैके तुहाडे वास्ते। तद तक मैनू अपने दोस्त आरजे निहारलन नू दिओ इजाजत, ते प्रोग्राम दा आखिरी गीत आवाज़ मुकेश दी तुहाडे पेशे खिदमत है।
1: मैंने

नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1900

48 दे वैसाख महीने दी 19 तारीखे। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने दी 9 तारीखे। इस वेले सवेर दे 4:58 हो रहे ने। साडी अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने।

राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान।

परमात्मा नाल जुड़ना आध्यात्मिक यात्रा हमेशा साडे जीवन दे विच सानू बहुत सारे उद्देश समझाने लई ते परमात्मा दे नाल जुड़न दे लई मदद करती है।

एफएम बैंड 102.4 मेगाहर्ट्ज़ से 5:03 हो जा रहे ने कुछ ही पलां दे बाद तुसी सुनोगे आकाशवाणी दे 90 वरे पूरे होण ते एक खास पेशकश। फिलहाल दे लई एक छोटा जाए सिलसिला शुरू करन तो पहला आकाशवाणी दे नाल